बीज लगता है, छोटी सी कोंपल निकलती है, फूटती है, फिर वो बड़ा होने लगता है और मुसलसल बढ़ता चला जाता है। और बहुत पुराने पुराने दरख्त भी आप देख सकते हैं कि किस किस्म के होते हैं ना। बीज से जड़ बनती है, जड़ से तना, तना से शाखें, शाखों से पत्तियां, पत्तियां भी निकलती है ना उसमें छोटी छोटी, या खजूर के दरख्त में लंबे लंबे पत्ते, फिर पूरा दरख्त फूल या फल, पहले फूल लगते हैं फिर फल। मोमिन की भी यही सिफत है, मोमिन भी हर आन नेकी में, खूबी में, भलाई में तरक्की करता है, उसका ईमान भी बढ़ता रहता है। दरख्त का बढ़ना क्या है? उसका तना बढ़े, उसकी शाखें ज्यादा हों, पत्ते ज्यादा हों, फल ज्यादा हो। ईमान का बढ़ना क्या है? कि अल्लाह की मारिफत हो, उस पर यकीन में इजाफा हो, उस पर एतमाद और तवक्कुल में इजाफा हो। दरख्त जमीन से मादनियात भी लेता है, है ना, सिर्फ पानी से तो नहीं दरख्त उगते। अगर आप पानी में डाल के रख दें उगे हुए दरख्त को तो थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह फजा से मुख्तलिफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ऑक्सीजन निकालता है। और आप देखें कि जो फजा की कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर जज्ब करके अपनी खुराक बना लेता है ना, उससे भी वो फायदा उठा लेता है और मुफीद गैस उससे बाहर आती। इसी तरह एक मोमिन जो है वो तरह तरह के ताने, मुख्तलिफ गलत बातें जब देखता है तो इबरत की निगाह से देखता है और उससे मुफीद चीजें बाहर आती। बुरा माहौल भी बसा औकात या उसकी मर्जी के खिलाफ चीजें भी क्या करती हैं, दरअसल उसके लिए इबरत का सबब बनती और वो जवाबन रिएक्ट नहीं करता बल्कि अपने आप की और इसलाह करता है, मुसीबत पड़ने पर सब्र करता है। इसी तरह नेमत मिलने पर शुक्र करता है और ये चीज उसको खुदा के करीब करती है। अब आप देखें कि जब कोई शख्स एक पाकीजा दरख्त बन जाता है, ईमान उसके अंदर दाखिल हो जाता है और उसको इल्म भी मिल जाता है और माहौल भी मिल जाता है, और अगर ना मानो तो उससे भी वो पॉजिटिव सोच के साथ उसको पॉजिटिव चीज में बदल देता है। ये सब चीजें इंसान के अंदर एक ऐसी तब्दीली लाते हैं कि सबसे पहले उसकी सोच मुतासर होती है, उसकी सोच पॉजिटिव होती है। कलमा तैयबा का असर इंसान पर सबसे पहले क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसके मिजाज में फर्क आता है, उसका अखलाक मजबूत होता है। अगर बीमार जड़ हो ना तो फूल ही गिर जाते हैं, वो फल तो लटक ही नहीं सकता उस पर खोखली जड़ों। उसकी रूह की पाकीजगी के साथ साथ उसके जिस्म में पाकीजगी आती, ये दोनों चीजें साथ साथ डेवलप होती। आप देखें कि जितना मजबूत, अच्छा, साफ सुथरा दरख्त होगा उसको देखकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा, यानी उसको देखने वालों का दिल खुश हो जाता है। बंदा मोमिन इस हाल में जीता है कि दूसरों के लिए खुशी का सामान होता है। जिससे जिगर लाला में हो ठंडक वो शबनम। फिर इसी तरह मामलात में आप अगर दरख्त की शाखों को देखें तो खा कितनी भी घनी हो, उसके पत्ते और फल और फूल हर एक अपनी अपनी जगह इतना खूबसूरत नजर आता है, यानी वो सब के साथ मामलात, यानी पास और भी दरख्त उगे हुए, अगर उसकी शाखें उसके अंदर भी जा रही हैं तो बदनुमा नहीं लगती, वो एक दूसरे को रास्ता देते हैं, दो दरख्त पास पास उगे। लेकिन हम इंसानों का हाल क्या है कि एक दूसरे को राह नहीं देंगे, दूसरों का रास्ता बंद करेंगे। शाखों का तसव्वुर लाए ना जरा जहन में कि जितनी चाहे फैली हुई हो लेकिन वो खूबसूरती के साथ दूसरों के साथ तआवुन कर रही होती। घने से घने जंगलात जिनमें इतने अंधेरा होता है कि रोशनी बाजों का नजर नहीं आती, लेकिन उसमें भी आप देखें कि एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरती के साथ एडजस्ट कर देते हैं कि अगर कोई इंसान उनको छेड़ दे तो उनका हुसन खराब हो जाता है। एक दरख्त नहीं, जितने दरख्त ज्यादा होंगे उतना ही माहौल खुशगवार हो जाएगा। और दरख्तों का कटना
ماحول

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस स्किन यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
3: सुपर वाइट।
4: अमाजी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के लियो एक नौ गिलो पेश आए वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अमाजी स्किन की बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ये अमां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म की स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधी का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर दिन, बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार, ताजगी सा गद। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। रास्ते जे लाइ फोन करियो 0336-3879-0312-0101-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
8: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा वॾा निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोल।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर थियण कमजोरी आई औरतन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते

0: पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331-252-5786।
2: जी हा 3135-5786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खूबसूरत ये जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अरे न खुश ए बीरोनो की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन जेमे आहन चारन ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी की लॉक करे ए चारन जो खूबी जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कर ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम सेट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: छा तव्हां जोड़न जी सूर पुठन जी तकलीफ़ कुल्हन जे सूर या वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल कंदड़ कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638789 ऐं 0312012187 खात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी जिंदगी
3: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 नवंबर बरोज अंगारे अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई

0: थी वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीज़नि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बिन भावानी ग्रुप।
1: खुशखबरी, मुंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे दन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-32-230।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस, दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

गवर्नर राज या इमरजेंसी जमहूरी मैंडेट ऐं आइनी हक़नि ते हमिलो हूंदो। दहशतगर्दीअ जो हल रुगो गवर्नर राज या इमरजेंसी न आहे। इमरजेंसी सूबे ऐं वफ़ाक लाइ नुक़सानकार साबित थींदी। केपीअ ते वधीक तजुर्बा न थियण घुर्जनि। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ते इतफ़ाक़ आहे, रुगो तरीक़े ते इख़्तिलाफ़ आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी गुंजाइश मौजूद आहे, मौक़ो मिलणु घुर्जे। केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी सदारत हेठि पिशावर में पार्टी अॻवाननि जो आम इजलास, लांग मार्च समेत वफ़ाक़ी हुकूमत सां जारी शिकायतुनि ते गौर कयो वियो।

केपीअ में इमरजेंसी आखिरी ऑप्शन आहे, असांजी का बि ज़ाती अना न आहे, असांजी अना रुगो पाकिस्तान ऐं मुल्क जो मफ़ाद आहे। ममलकती

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है।
4: हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट
6: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला है ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो थाव खी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो
9: डॉक्टर अतीका सईद

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 3135525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सीर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। हम ये कैसे हैं आप जी, जहाँ जहाँ भी मौजूद एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाई के प्रोडक्ट्स भाई अक्सर कस्मेटिक्स जिनकी जानिब से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। तो जी आज भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या बताएंगे, वो सब कुछ बताएंगे कि जिससे आपकी खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम वक्त की बात करते हैं। वक्त हुआ जाता है 11:17 जगह पाकिस्तान का मियादी वक्त है, तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बेटर लग देना वो अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस इसलिए खुदा खैरी मौजूद और तो खुदा खैरी।

वो तो मानते लोग जिन लोगों की आज सालगिरह हैं उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दुनियावर में गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे बरसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दूसरे कहेंगे मरहबन बिगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे लेजी आया नू सद सुल्ला बाजार शाह निहा एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. तो सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आपकी खूबसूरती में कर रहे हैं बे इंतहा इजाफा. तो आज भी हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो कि आप सुनना चाहते हैं या जो आप हमसे हमें सुनाना चाहते हैं. लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. अब वो गाना कौन सा होगा

मुकेश जी। जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, जो कि आप लोगों के लिए अक्सा कॉस्मेटिक्स वाले बनाते हैं और एक प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जी, और आपकी खूबसूरती को बनाते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो अगर आप भी ऐसे ही खूबसूरत बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, सिद्धार्थ आप भी यूज करेंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को। अब सुपर वाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग यूज करके अपनी खूबसूरती को मजीद और खूबसूरत बना सकते हैं जी। और वो कैसे, वो ऐसे कि सुपर वाइट की वाइटमिन है, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, और साथ में इनके फेस वॉशेज भी आते हैं। और तमाम के रिजल्ट को, इन तमाम प्रोडक्ट्स के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना हो या मजीद और एनहेंस करना हो तो होगा कि इसके अंदर सुपर वाइट फॉलो कार्ड ब्यूटी सीरम बूस्टर एड करना है, जो कि आपको और राइस ब्यूटी सीरम भी मिल जाता है आपको। इसके अलावा ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि सुपर वाइट वाले किसी भी चीज के रिजल्ट को एनहेंस करने के लिए, उसमें ऐड करने के लिए बनाते हैं, ताकि आप खूबसूरत से मजीद और लग सकें, दिख सकें, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं वो आगे चल के आपको बताते हैं जी, एंड साथ साथ आपको हेल्पलाइन नंबर भी बताते जाएंगे सुपर वाइट वालों का, क्योंकि सुपर वाइट वाले नहीं चाहते कि आपको प्रोडक्ट्स ना मिले। सुपर वाइट वाले चाहते हैं, अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले चाहते हैं कि आप तक हर वो प्रोडक्ट पहुंचे जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले बना रहे हैं।

वैसे सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना के लिए 0314775462। ठीक है, इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं सखर और लाड़काना वाले। इसके अलावा जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं वो रब्ता करेंगे, मुमताज हसन खान हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, इनसे रब्ता करेंगे और अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवाएंगे। तो मुमताज हसन खान का नंबर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा 0370256832705683211। ये हैदराबाद वालों के लिए है और सखर और लाड़काना वालों के लिए है 0314775446।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे मैं खुश और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आए हैं चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे आई चामर जी खूबी जिल्द में फाइन लाइन एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर हर ही रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी खुशखबरी अख्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल्क नोट सभी मरीजन के लेंस चश्मा दवाओं मुफ्त में डीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मैच कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारी में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई ओराज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आईवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रा दी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए

खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड

0: MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचरते सुबह 10 वगे खां रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो आई बियन बीमारियन जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मात रबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 0310-3143-842।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी, तो ज्वाइन कीजिए और साथ साथ सुपर मार्केट प्रोडक्ट को यूज कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं। और वो तमाम तर लोग जो कि गर्मियों की वजह से टैनिंग और छाइयों वगैरह का शिकार हो चुके हैं और पिगमेंटेशन आ चुकी है चेहरे के ऊपर, कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है, तो इस मसले का हल आपके पास अब मौजूद है और वो है सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम। और सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम जो कि एंटी डलनेस भी है और एंटी एजिंग भी है, तो अगर आपके फेस के ऊपर फाइन लाइन या इस तरह का कोई और मसला है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने यूज करनी है, इसमें बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। ये क्रीम आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, आपके चेहरे को फ्रेंडनेस देती है, इंक्रीज करती है आपके चेहरे की फ्रेंडनेस को, पोर्स को मिनिमाइज करती है और

0: एजिंग स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, आपकी फेयरनेस को इंक्रीज करती है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल सेफ और हेल्दी प्रोडक्ट है, तो आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाती है। तो ये इसकी खास बात है। तो अगर आप इसके रिजल्ट्स को भी डबल से ट्रिपल या फिर डबल से ट्रिपल से ज्यादा कहीं और इनहेंस करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग सुपर व्हाइट वालों का सुपर ब्यूटी सीरम बूस्टर एड कर सकते हैं, और आपने बूस्टर को भी बाय कर लेना है इसके साथ, और इस क्रीम के अंदर आप लोगों ने बूस्टर को ऐड करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको स्टोर कर लें रात को सोने से पहले। सुपर वाइट के विटामिन सी फेस वॉश से फेस को वॉश करना है एंड देन चेहरे को खुश करके विटामिन सी अप्लाई करना है। ये विटामिन सी ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की, जो कि आपको पहले ही तीन दिन में वाजे फर्क दिखा देगी, और सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सीरम बूस्टर, जो कि आप अपनी क्रीम्स में ऐड कर सकते हैं, आप अपने मॉइस्चराइजर्स में ऐड कर सकते हैं, आप अपने हैंड एंड फीट क्रीम में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब कोई फेशियल वगैरह कर रहे हो तो फेशियल के हर स्टेप में आप लोग ब्यूटी सीरम बूस्टर की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके उस वेरिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट आपके जो रिजल्ट हैं आपके फेशियल के या फिर आपकी ब्लीच क्रीम के या फिर आपकी ब्यूटी क्रीम के या फिर आपके मॉइस्चराइजर के, वो बढ़ जाते हैं और आपको मिलती है डबल से ट्रिपल फेयरनेस। तो अगर आप भी इसी तरीके से खूबसूरत बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, लगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती भी डबल से कहीं ज्यादा ट्रिपल हो, तो डायरेक्ट आप यूज करेंगे सुपर वाइट के ये प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जी सुपर वाइट वालों की सिर्फ विटामिन सी क्रीम ही नहीं और दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि सुपर वाइट वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि तीन दिन में विजिबल रिजल्ट्स देती है। तो तीन दिन में विजिबल रिजल्ट्स देने के साथ साथ ये कोरियन फार्मूला के साथ तैयार की गई है, कोरियन ग्लास स्किन देगी सुपर वाइट की कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम। और इसमें भी आप लोग सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करते हैं, सो दैट इसके रिजल्ट्स भी जो है ना डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और आप देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको यूज करें तो उसके साथ खरीद करना ना भूलें सुपर वाइट के स्ट्रॉबेरी फेस वॉश को, सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश रात को सोने से पहले या फिर दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करते हैं तो आपने इसी से फेस को वॉश करना है एंड देन सुपर वाइट वालों की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को अप्लाई करना है। आप इसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम विटामिन सी की जो ब्यूटी क्रीम है आप उसको डे में भी अप्लाई कर सकते हैं और नाइट में भी। अगर आप डे में नहीं करना चाहते तो आपने रात में इसको लाजमी पाबंदी से लगाना है, देन आपको तीन दिन में वाजे फर्क भी नजर आएगा और जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन से रिलेटेड जितने भी मसले हैं, एक्नी है, छाइयां हैं, झुर्रियां हैं, डलनेस है या फिर आपका जो फेस है वो पिगमेंटेशन का शिकार हो चुका है, तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं। और सिर्फ फेस के मसले मसाले ही नहीं, हैंड्स एंड फीट के लिए भी सुपर वाइट वाले इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि उससे आप जो है ना अपना फार्मूला तैयार कर सकते हैं हैंड्स एंड फीट के लिए। आप वो कैसे करेंगे वो आगे चल के आपको बताती हूँ, साथ साथ मैं आपको हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करवाती जाऊंगी। तो हेल्पलाइन नंबर है सखर और लाड़काना वाले, डायल कीजिएगा 03-14-77-544-62। इसके अलावा मुमताज हसन खान हैदराबाद से, हैदराबाद करेंगे 03-70-256-8321, ठीक है, ये डायल करेंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी। आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स जो कि मुझे रिसीव होती जा रही हैं, हम कॉल्स को इंटरटेन करेंगे और बहुत सारी लाइव कॉल्स मुझे रिसीव होती जा रही है, सो आप लोगों के लिए ओपन कर आप लोग कॉल कर सकें। सो फर्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: रशीद अहमद कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जी? प्रोग्राम तो सुना हूँ मगर काफी अच्छा था, कुछ जो पोजिशन रही बस इसी तरह आपको याद करते रहे। तू सुबह पाक हवा मेरी जान, मेरा मेरी जान, तेन सुनिए रीते तेन बुलिए रीते कुछ सचरा, तू लाती जा बेटा वर जा।

0: और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइफ प्रोडक्ट्स। एक और कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो, वालेकुम असलाम, कौन कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? सॉरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है। जी जी बताइए कौन बात कर रहे हैं? ओके कॉल ड्रॉप हो गई, एक और ट्राई करेंगे। जी हेलो,
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम शमा किशोर, कैसे ठीक ठाक?
1: शुक्र अल्लाह का, आप सुना?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये बताइएगा कि कितनी दफा कॉल मिलाई तो कॉल लग गई है?
1: अभी तकरीबन 15-20 बार
0: मिलाई है। चलें जबरदस्त, अब कॉल लग गई है। कोई अच्छे से गाना लेकर आए हैं?
1: जी हाँ, तीसरी बार कॉल लगी है।
0: ओके चलें, लग गई। अब गाना सुना दें।
1: हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी

0: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
1: अरे वाह,
2: मेरी आवाज वापस इतनी आ रही
1: है। अच्छा वापस आ रही है, आपको भी वापस आ रही है।
2: आपके जब से मैं आपका शो ज्वाइन किया है ना, तब से आपकी आवाज वापस ही आ रही है।
1: वापस ही आ रही है तो अच्छी बात है ना, आपको पता
2: गाने में थोड़ा है ना
1: डिस्टर्ब हो रहा हूँ। गा रहे
2: गाने में काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ।
1: चले खैर कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। और कुछ कहना चाहेंगे इस माँ की शोर?
2: बस
1: बस हो गया
2: हो गया। थैंक यू।
1: ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाई प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप। मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।

0: वक्त भी वह बेडी घुराए पूरी करे दींदा सी घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे जरिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

8888 इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद सुपरवाइज के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे कि अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किए और अगर कर लिए हैं तो कौन से किए हैं, ठीक है। और साथ साथ जहां जहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है वहां पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कीजिएगा।

0: अच्छा, इसके साथ साथ मैं बात कर रही थी हैंड्स एंड फीट्स के फार्मूले की। तो हैंड्स एंड फीट्स का फार्मूला आप सुपर वाई के प्रोडक्ट से ही तैयार कर सकते हैं। सो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि सुपर वाई के या सुपर वाई की कोई भी ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, सुपर वाई की कोई भी ब्यूटी क्रीम लेने के बाद उसमें आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली ऐड करनी है। कौन सी? सुपर वाइट की। सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली को ऐड करेंगे, ठीक है। सुपर वाइट की पेट्रोलियम जेली जो कि आपको डिफरेंट अलग अलग वेरिएंट्स में मिल जाती है, आपको लेमन में मिल जाती है, पिंक में मिल जाती है, कोकाओ बटर में मिल जाती है, ऐसे ही और भी बहुत सारे दूसरे फ्लेवर्स हैं जिनमें आपको ये मिल जाती है, ठीक है जी। तो जरूर आप लोगों ने ट्राई करना है और एक अदद अपनी पसंद से फ्लेवर चूज करके पेट्रोलियम जेली लेनी है और साथ में एक अदद सुपर वाई की ब्यूटी क्रीम लेनी है और सुपर वाई की ब्यूटी क्रीम की क्वांटिटी के बराबर आप लोगों ने लेनी है पेट्रोलियम जेली, ठीक है। पेट्रोलियम जेली लेने के बाद आप लोगों ने दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तैयार है आपका हैंड्स एंड फीट्स फार्मूला। अगर आप चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स को डबल से ट्रिपल करें तो सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सीरम बूस्टर भी ऐड कर लें, ठीक है। जितनी भी ट्रेनिंग है हैंड्स एंड फीट्स के ऊपर, डार्क नकल्स हैं और हाथों की जो जल्द है वो बेरोनक सी रहती है या पैरों की जल्द जो है बेरोनक सी रहती है, साफ सुथरे नहीं नजर आते। सो ये तमाम जो मसले मसाइल जो कि हैंड्स एंड फीट से रिलेटेड तमाम लोगों को करने पड़ रहे होते हैं, चाहे फिर वो मर्द हजरात हो या फिर खवातीन हो, ठीक है, दोनों ही यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को बनाने के बाद, ठीक है। हैंड्स एंड फीट फार्मूला तैयार करने के बाद आप दोनों ही यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सोप को भी आप अगर इसके रिजल्ट को और मजीद दुगना करना चाहते हैं तो सुपर वाइट की सोप्स आते हैं जी, सुपर वाइट ऑयल फ्री सोप और साथ में सुपर वाइट का राइस सोप, ठीक है। आप इन सोप्स को अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं जी, और जहां आप दूसरे बहुत सारे सोप यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस करके सुपर वाइट के सोप से आप सुपर वाइट के सोप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे अच्छे आपको दिखेंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जरूर आप लोग देखें कि आपको कितने अच्छे और खूबसूरत से रिजल्ट्स मिल रहे हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद। तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करें और अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। इसके अलावा 03000113488 के ऊपर कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट, हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: आपको
0: चाचर, कल कॉल लगी थी, डेली कॉल नहीं करनी?
1: जी हाँ, कल कॉल लगी थी। लाड़काना में सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम मौजूद नहीं है।
0: चले, लाड़काना में मौजूद नहीं है, मैं लाड़काना वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ, वो नोट डाउन करें और अवेलेबल करवा लें। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें। 03000113488 और जो लोग कल कॉल कर चुके हैं वो आज कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, कॉल करेंगे कॉल ड्रॉप कर दूंगी, फिर ना कहिएगा बताया नहीं। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: अब्दुल हादी बात कर रहा हूँ, लाहौर से।
0: अब्दुल हादी बात कर रहे हैं, पक्की बात है?
2: हाँ।
0: ओके, अब्दुल हादी पहली दफा कॉल कर रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा आप पहली दफा कॉल कर रहे हैं।
2: आपको क्या लग रहा?
0: मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी कई मरतबा कॉल की है, अगर तो मेरा शक सही है। तो बताए, पहली दफा कॉल की है?
2: हाँ, पहली दफा कॉल की है, पहली दफा कॉल की है और पहली दफा ही प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: अच्छा, कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें?
2: लाहौर से, बताया तो मैं
0: लाहौर से सुन रहे हैं। ओके, लाहौर से सुन रहे हैं, लाहौर में कैसे सुन रहे हैं आप हमें? फेसबुक से?
2: आवाज ऑडिबल से।
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसके दामन से प्रोग्राम है?
2: ये फर्स्ट टाइम सुना है ना?
0: फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा, प्रोग्राम भी फर्स्ट टाइम सुना है, कॉल भी फर्स्ट टाइम की। ओके, तो मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है प्रोग्राम?
2: आवाज तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, इसीलिए तो कॉल की है।
0: आवाज बहुत प्यारी है, इसीलिए तो कॉल की है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या प्यारा है वैसे? मेरे ख्याल से मैं जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ वो भी बहुत प्यारे हैं। ओके जी, और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें आप?
2: मेरी आवाज मुझे बैक दिखाई दे रही है।
0: اچھا واپس آ رہی ہے آپ کو آپ کی آواز. چلیں اس کے ساتھ آپ گزارا کریں اور مجھے بتائیں کہ اور کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ سنانا چاہیں گے.
2: آپ نشتر او ایس ٹی سنا دیں, نشتر راما گل او ایس ٹی.
0: نشتر او ایس ٹی, اوکے ابھی سنا دیتے ہیں. آپ کو کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟
2: سمتھنگ اینی ایل.
0: اوکے اور کچھ
2: کیا گنگنا کے سنانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟
0: نہیں گا کے نہیں سنانا, گانے والا سیگمنٹ تو خیر ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم او ایس ٹی چلا دیتے ہیں.
2: اوکے
0: ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا عبد الحادی. اللہ حافظ. اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جی, اور ٹائم بہت لمیٹڈ ہے, وقت کا مقابلہ شدید سخت ہو رہا ہے. تو ہم او ایس ٹی سانگ پلے کرتے ہیں جی, اور یہ جو او ایس ٹی سانگ ہے میں چیک کروں گی کہ مجھے مل جائے, کیونکہ جب میں نے سرچ کیا تو میرے سامنے ڈرامہ آ گیا ہے, او ایس ٹی نہیں آیا ہے. تو او ایس ٹی مجھے مل چکا ہے, اور یہ کچھ زیادہ مطلب 8 منٹ کا او ایس ٹی, واو 8 اور 6 منٹ کا او ایس ٹی. چلیں اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا گانا ہے یہ ہے کیسا. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا شو

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहर।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अरे मैं खुश और बीरोनों की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिन में आए चार रंग की खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनकी नमी की लॉक करे ऐ चामर की खूबी जिल्द में फाइन लाइंस ऐ झुरन की घट कर ऐ रिंकल्स की घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जिल्द को बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोइ अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

say a single word. And it can make my vision turn. I'm all nerve ends, all sense, no sense. तरीके से दूसरे वेरिएंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ यूज करना है मिक्स करके, तो बिल्कुल आप बहुत ज्यादा समझदार हैं आप सब लोग। तो इसी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने मार्केट जाना है, ये प्रोडक्ट्स लेने हैं। अगर कहीं पे नहीं है अवेलेबल सखर और लाड़खाना में, तो वहां पे हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट डाउन कीजिए, वहां पे अवेलेबल करवाने के लिए। मतलब मैं खुद भी सखर में और मैं कह रही हूँ मैं वहां पे अवेलेबल करवाऊंगा। अच्छा, वहां से मुराद है लाड़खाना, ठीक है, और सखर वाला, लाड़खाना और सखर वाले दोनों ये नंबर डायल करेंगे। तो क्या है इमरान साहब का 03147544462। एक और बार बताएंगे स्लोली 03147544462। इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे नंबर जो कि मुमताज हसन खान का है, और इस नंबर को डायल करके क्या करेंगे, इस नंबर को डायल करके हैदराबाद में अवेलेबल करवाएंगे जहां जहां अवेलेबल नहीं है। सो हैदराबाद के लिए नंबर है 03702568321, 03702568।

पर साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ चेंज करके कुछ अच्छा सा प्ले कर दूँ, और वो चेंज करने के बाद जो अच्छा सा मैं प्ले करूंगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा जो मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे गाने आ जाए ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है और मैं कौन सा प्ले करूँ. तो इसी सिचुएशन में मैं अभी भी

0: शॉ और साथ साथ कॉमर्स और मैसेजेस को एंटरटेन करते हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए हैं, ट्विनी मीरवा से अदी रुखसार, मोहम्मद आजम राजपर हमें सुन रहे हैं, कोट गुल हसन शर तालुका संदरी से हैदरबाग शर हमें सुन रहे हैं रुखसार जी भाई,
1: अपने हाथों से।
0: इसके अलावा जी कमेंट्स को इंक्लूड करते जाएंगे, मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, मोहसिन अली हमें सुन रहे हैं, सिस्टर रुखसार आपका शो वीआईपी है, थैंक यू मोहसिन, मीर मुमताज अली जतोई हमें सुन रहे हैं, रजा नियाज मक्सी हमें सुन रहे हैं, ढूंढा है हर जगह पे कहीं पर नहीं मिला, गम से तो घिरा कोई समंदर नहीं मिला, ये तजुर्बा हुआ है मोहब्बत की राह में, खोकर मिला जो हमको वो पाकर नहीं मिला, दहलीज अपनी छोड़ दी जिसने भी एक बार, दीवारों दर ही इसको मिले घर नहीं मिला, वाह, सारी चमक हमारे पसीने की है जनाब, वर्षे में हमको कोई भी जेवर नहीं मिला, अरे वाह क्या बात है।

किशोर, जिन्होंने अब अपनी आईडी को किशोर कुमार कर दिया है। किशोर कुमार, अगर हम आपको सुन रहे हैं तो जाहिर है मोबाइल हाथ में ही है, मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हाथ में है। ठीक है, हाथ में है तो अच्छी बात है, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा थैंक यू सो मच इस्मार किशोर, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे बता कि मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया। इस्लामिक वीडियोस ने कमेंट किया, अच्छा। मीर मुमताज अली जतोई हमें सुन रहे हैं, कहा गया कमेंट। अब्दुल जी कैसर हमें सुन रहे हैं, इमरान मलिक कहते हैं सुपर वाइट नाइस क्रीम, सरफराज अली कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाय रुसार जी, हाउ आर यू, योर शो इज नाइस, थैंक यू सरफराज अली। इसके अलावा नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं, नजीर खोसो थैंक यू। अब्दुल गफ्फार रान हमें सुन रहे हैं, अली रजा दुबई से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू अली रजा। अरशद मरी हमें सुन रहे हैं, सलाम कैसे हैं, वालेकुम असलाम अच्छी हूँ।

वफाकी सरकार केपी में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लागू करे छॾियो। वफाकी काबीना जी केपीअ में इमरजेंसी लॻाइण जी मंज़ूरीअ खां पोइ सदर आसिफ अली ज़रदारीअ समरीअ ते सही करे छॾी। आइन जे आर्टिकल 232 ऐं 234 तहत इमरजेंसी लॻाइण जी समरीअ ते सही कई। ज़रियनि मूजिबि गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ खे सूबे जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बणायो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि 12 ज़िलनि जा इंतिज़ामी मामला धार करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। अगूणे फाटा जे 8 DI खान लकी मरवत ऐं कोहाट ज़िलनि में कंट्रोल वफ़ाक वटि हूंदो। 12 ई ज़िलनि लाइ धार सेक्रेटरी ठहंदा, हिकु एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐं हिकु एडिशनल IG पुलिस मुक़रर थींदो। छा मुल्क दुश्मनीअ ते खामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं? हिकु जथो इस्लामाबाद अचे पाकिस्तान खे ॿीहर तबाहीअ जे किनारे ते पहुचाइण चाहे थो। पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खे ख़िताब। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त शाही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि वरजाइण चाहिनि था। इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो आहे, ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो। KP हुकूमत दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ वफ़ाक़ सां सहकार करण में तयार न आहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में KP पुलिस ऐं एहसास इदारनि जो सिक्योरिटी बाबति 2 रिपोर्ट्स पेश। रिपोर्टनि मूजिबि 1 मार्च 2024 खां 26 सेप्टेम्बर 2026 ताईं KP में दहशतगर्दीअ जे वाकियनि में 195% वाधि थी आहे। 2026 में 170 ड्रोन हमला कया विया। पुलिस ऐं CTD खे जदीद हथियारनि ऐं ऑपरेशन लाइ ज़रूरी सामान जी खोट आहे। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ऐं सहूलतकारनि सां सूबाई हुकूमत जी नाकारा पॉलिसी ऐं दहशतगर्दनि लाइ नरमी दहशतगर्दीअ में वाधि सबबु थी।

0: वॾो वज़ीर सियद मुराद अली शाह चीन जे दौरे ते रवानो थी वियो। वॾे वज़ीर सां गॾु वफ़द में शर्जील इनाम मेमण जाम खान छोरो कासिम नवीद ऐं मोहम्मद बख्शमार शामिल। वॾे वज़ीर जे वफ़द समेत चीन जे दौरे दौरान सिंध में सीड़पकारी आणण लाइ आम मुलाक़ातूं कंदो। बख्शापुर भरसां औरत घरू अणत बणत तां मुबैना तौर क़तल, लाश गुम, हिकु जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ अरबेलो बंगवार में औरत खे मुबैना तौर क़तल करे लाश गुम कयो वियो। सरकारी फरियाद ते अब्दुल वाहिद बंगवार ऐं अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। पुलिस जवाबदार अब्दुल वाहिद बंगवार खे गिरफ़्तार करे जांच शुरू करे छॾी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं GAFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो सेहतमंद। 0312-34-01-200

0: बीमारियुनि, थे में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो।

0: रेडियो जी एफ ए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
0: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 03125252786
0: जी हां 2315525786
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: दरवाजे
1: बिकॉज आली रे आली सिद्र आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास आते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
2: ओ मेरी बाबू कौन है

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

क्या बात है, आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के चर्चे हो रहे हैं, आपके थोड़े बहुत से खर्चे कराएंगे जनाब। ऐसा होता है ना कि भाई जब खूबसूरती की बात आ जाती है तो क्या खर्चा और कैसा खर्चा। आप लोगों को अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो कि भाई अपने खूबसूरती को ना मेंटेन रखने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को अगर हम यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो आप लोगों से कुछ ऐसा वैसा नहीं करवाएंगे, बस आप लोगों को सही तरीके से सही राह पर चलाएंगे कि भाई आपने जो है ना ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दौड़ में अगर आप चल रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं जो कि भाई आप लोगों के चेहरे पर निखार तो नहीं लाते बल्कि उल्टा आपके चेहरे पर खराबी ही लेकर आते हैं। अगर आपके चेहरे की स्किन टोटली खराब हो चुकी या फिर आप उस सिचुएशन में जरा फंस चुके हैं आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आप सही तरह से और सही तरीके से अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत रह सकते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मशवरा दिया जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी कराते रहेंगे और अपनी खूबसूरती को मेंटेन भी करते रहेंगे। उनके अलावा अगर ऐसा प्रोग्राम की अगली वधायूं था अजय प्रोग्राम जो टॉपिक अच्छा हूँ दोनों तरफ भी अच्छी बनी था। आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा आप लोगों से जो पूछूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं है। हाँ जी, यानी कि ऐसा होता है ना कि हर मुल्क का एक ऑफिशियल कैपिटल होता है, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना, इस सवाल का मुझे जवाब बताएंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए। और क्या तरीके कार होने वाले हैं आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ये तीनों काम आप लोगों के करने के होते हैं, तो लाजमी कीजिए अपने हिस्से का काम। मैं तो अपने हिस्से का काम कर ही रही हूँ। ओके जी, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर दिया करें। उनके अलावा बिल्कुल जी, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह आ जाती है कि आप लोग हमें यानी कि अभी अभी सुनना स्टार्ट कर चुके हैं, आपको नहीं पता कि हम कैसे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर्स बताऊंगी। नंबर्स के ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है, नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ना आपको नंबर्स जो है वो जरा नोट करने होंगे। नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर्स हैं 0332738430 9, बुरी 300 73 74 8390 ही नंबर आज को तुम डायल करना। अगर इन नंबर से तुम्हें रिस्पॉन्स न तो मिले तो तुम्हारे लिए बो नंबर आए उन नंबर से तुम ट्राई करी सको था, बो नंबर आए 03 12 50 25 907 9070 ही नंबर जो तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। ठीक हो गया, डायल कीजिएगा और जरूर से उन्हें बताइएगा कि आप भी परचेज करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिलते हैं, तो इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए। और साथ साथ मुझे भी बताइए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक नहीं। और मुझे साथ साथ जरा सवाल का जवाब भी बताते रहिए कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई ऑफिशियल कैपिटल ही नहीं।
और जी साथ साथ आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। और अब्दुल जी कैसर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी खुश आमदीद के साथ। तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तारिक भाई को। नजीर कोसों में बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, कहते हैं इंसान के अल्फाज पर नहीं उसकी नीयत पर गौर करें, क्योंकि कोई डांट कर आपका भला चाहता है तो कोई मुस्कुराकर आपकी जड़ें काटना चाहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और गुलबहार जूनी जो हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मायरा है हमारे साथ, ठीक है मायरा कहती है क्या हाल है, कैसी हो, खैरियत से? हाँ जी खैरियत से, प्यारा शो में और आपके साथ। जी जी आप हमारे साथ हैं, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा मुस्कान जी, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, आपको भी वेलकम हो गया। एहसन अरबानी वालेकुम अस्सलाम, मौलवी सलाम मदद कहते हैं। मुस्कान जी तबीयत कैसी है आपकी, मूड वगैरह ठीक ठाक है ना? आहो जी सफा मजे में, ताम उधायो कहते आज संडे है ना तो मैं जल्दी आ गया, क्योंकि बाद में रश भी हो सकती है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो जल्दी से सेट पर कब्जा, सीट पर कब्जा कर लिया, सही किया आपने। और अली रजा लगारी हमारे साथ हैं, गोट जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? कहते शो तमाम नाइस है, सॉन्ग असा, अच्छा ठीक है गाना सुनाएंगे, डेडिकेट अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरसी गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोकर, अल्लाह नो नानी के, ओके हो गया जी। वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आप मुझे बताइएगा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर अभी तक रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप सारे लोग कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल कराइए, और अवेलेबल कराने के लिए नंबर्स के ऊपर राबता करते रहिए, कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। मैंने जो ये प्यारा सा गाना लगाया है

0: ये गाना डेडिकेट जाएगा जनाब।
1: पतले तन ते सजदे तेनू फुल्ला वाला चोला, सौ साला विच हिक जमदा ए तेजे।
0: भाई आप सब लोग जानते हैं आबिद भाई को, जो हमारे बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि बेरिया रोड में अच्छे से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप सब लोगों के लिए अवेलेबल कराते जा रहे हैं। और दिलरुबा ने भी बोला कि भाई मैं आबिद भाई की तरफ से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कराऊंगी। और ये बात भी आपको याद ही होगी कि आबिद भाई आपको डिस्काउंट के ऊपर जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि भाई आबिद भाई का यहाँ पर क्यों जिक्र आ चुका आबिद भाई का भाई जिक्र तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। आबिद भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप जरूर से, अगर आप हमें बेरिया रोड से सुन रहे हैं तो आप आबिद भाई की हाँ जाइएगा, वहां पर उनकी शॉप भी है, तो वो आपको जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स दे देंगे। लेकिन ये जो गाना हमने लगाया है ना, ये प्यारा सा गाना इरफान साहब हमारे सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो इरफान साहब की तरफ से आबिद भाई की जो प्यारी सी बेटियां हैं जिनमें मिनसा शामिल है, मिन्हा शामिल है, ईमान शामिल है, वो भी हमारा शो सुन रही हैं।
1: बांसुरी मुरली में दी मुरली दे नल घुंघरू।
0: तो ये प्यारा सा गाना आबिद भाई के प्यार को डेडिकेट जाता है इरफान साहब की तरफ से। जी बिल्कुल, इरफान साहब की ये प्यारी सी परियां जो है ना, प्यारी सी भतीजियां हैं, तो ये गाना उनको डेडिकेट जाता है, मिनसा को, मिन्हा को और ईमान को। इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इन प्यारी सी परियों के अच्छे नसीब करे। वैसे बेटियों का जब भी नाम आता है तो मेरे दिल में यही दुआ आती है कि भाई बेटियों का जब भी आप नाम सुने, किसी भी प्यारी बच्ची का नाम सुने, तो उसके हक में ये दुआ जरूर किया करें, अल्लाह पाक इन छोटी सी परियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियों के नसीब जो है ना वो अच्छे हो तो दिल को सुकून मिल जाता है। तो आबिद भाई की प्यारी सी परियां हमारे साथ मौजूद हैं, और अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। और इरफान साहब की तरफ से ये प्यारा सा गाना उन तीनों परियों को डेडिकेट।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं, हमेशा के लिए हसीन, प्यारे और खूबसूरत बन सकते हैं। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन, आप सब ही लगाइए और सब ही खूबसूरत हो जाइए और परचेज करते जाइए। इसी के साथ साथ नंबर के ऊपर भी रब्ता रखिए ताकि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर के ऊपर अवेलेबल कराते रहे। हमारी टीम माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, तो आप

लाजमी से कांटेक्ट कीजिएगा, उनको बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। इसी के साथ गाना सुनते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप तब तक ऐसे कीजिए, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2:30 p.m. This
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अरे न खुश और बेरोनक की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चार अंजू खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम आ प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स।
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी जेका चमकीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम।

0: लाइ ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीज़नि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। माणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

भाई जानी ॾाढो वणेस थो अॼुकल्ह जानी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाएसि पियो समझंदा कयो ॻाल्हि खे ओके जी पोस्ट को लाइक को शेयर करते रहिए और आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। अच्छा महबूब अली मोरो से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सिस्टर आरजे अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर आपका प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेरी वेरी वीआईपी है। सिस्टर एक जी भा मां इहो सिंगर सर्च कयां थी, मूंखे हिन जो कोई सुठो गानो मिलियो त तव्हांजे लाइ हलाए वठूंगा। ठीकु आहे, तो थैंक यू तव्हां सां सगेट मौजूद आहियो और दोबारा तव्हां मैसेज कयो आहे कुंज अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर आपका प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेरी वेरी नाइस लॻे थो, तव्हां उहो वराई मैसेज लिखियो आहे। ओके, लेकिन हिन में तव्हां कुंज न लिखिया, ॿिए में तव्हां वरी कुंज लिखी करे मोकिलियो। एॾी महिनत आई ली मारे छॾींदा आहियो।

बाबा ही कमाल अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां बि लॻायो तव्हां बि सोणा सोणा सोणा थी वेंदा समझो था सोणा सोणा ऐं सोणा थी वेंदा दर्द दिल कहती की ये तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है वही तो

अच्छा अब्दुल माहर कहते मीरपुर खास से, तुमने बोला था कि हमारा कोई नहीं, हम भी तो तुम्हारा भाई हैं। मीरपुर खास आओ, हमारी दिल से दावत है, मैसेज। अच्छा हो मेरा चना का गाना सुनना चाहते। अच्छा भाई, ये ठीक बात है कि आप मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन वो क्या है कि मैं ज्यादा कहीं जाती नहीं, डिटो हूँ या चीज नोटिस कई हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा घूम दिया है। तो कभी मीरपुर खास चक्कर लगा तो आपको बता देंगे कि हाँ जी, हमने मीरपुर खास देख लिया, घूम लिया। और साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी ना, तमाम बेहतरीन अंदाज, मीठा आवाज, माय उस्ताद आजे सिद्रो, सदा सलामत रहे। टॉपिक ओके। अच्छा साइमा, आपको वेलकम कहते हैं प्यारू। और ये मौजूद है, हाउ आर यू सिद्रा जी, जवाब ओके। वहाँ कोई सही अटतर मोरी से राजा हमीर चंद है, किशोर कुमार है, हीरा भाई है, सुरेश और फोजिया का गाना सुनना चाहते हैं, मेरे ख्याल में लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई भाई, बताएं तो। सजाद अली रुस्तमानी में सुन रहे हैं मातली से, सजाद भाई कहते हैं कि पेरियो जी सजाद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए तो आपको यकीनन बहुत से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही अच्छी और खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए है, यानी कि आप इसे मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, आप इसे खवातीन भी लगा सकते हैं। तो जितनी भी औरतें हमें सुन रही है, मर्द हजरात हमें सुन

लड़कियां हमें सुन रही है, लड़के हमें सुन रहे हैं, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कर सकते हैं। यस।

0: दुर्भाग्य थे कि तुझो बस हले तो तू पंजे घर भी न वनी रुगो स्टूडियो में बैठी हुजे
1: एड़ी भी गाल ना
0: है। वैसे ना ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया, ये अस वाला मोमेंट हो गया। हाँ बस ठीक है, मां हिते पंहिंजो सॼो सामान वग़ैरह खणी अचां थी, मां हिते ई रहण हाणे स्टार्ट कंदमि।

ॾाढो भलो गानो हुयो। उन खां अलावा चाचा कहते हैं कि सॉन्ग रिक्वेस्ट हाज़िर, तव्हांजो गानो हलायूं था चाचा, पर भलो भलो गानो फरमाइश कजो। और अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। अल्लाह जाइदा ऐसा कहते हैं सोना न मन मोणा थी वेंदा। हाँ तव्हां सही आयो।

भाई मत कहें ऐसा मत कहें. आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ऊपर फोकस कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बड़ा खूबसूरत बना रही है, तो आप भी लगाइए और बेफिक्र होकर लगाइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको जो रिजल्ट्स देगी वो फेशियल वाले रिजल्ट्स होने वाले हैं. यानी कि अब आप जो खूबसूरत होंगे वो इस तरह खूबसूरत होंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि बताएं तो ये इतना महंगा फेशियल कराया आपने, शायद आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, आपकी स्किन इतनी टाइट हो चुकी है, रिंकल्स गायब हो चुके हैं, फ्रेकल्स गायब हो चुके हैं, क्रेकल्स गायब हो चुके हैं, तो उन्हें बताइएगा कि जी हमने जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है. तो आप भी लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

चाचा कहते हैं कि मैं मीरपुर खास वालों का शुक्र गुजार हूँ, वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, स्पेशली उम्मीद अली लाशारी। ओके जी जी जी, दर्दे दिल भी लगा रही हैं, अब्दुल्ला भाई भी लगा रहे हैं, और ऐसे मीरपुर खास से जितने भी लोग लगा रहे हैं, जरा बताइए हथ मथे कहो असांके खबर पर। और गदा हुसैन भाई कहते हैं कि सिदरा मोहम्मद बख्श मल्ला दुकान वाला बोल रहा है कि मेरे पास तो टच मोबाइल नहीं है, कैसे सिदरा को मैसेज करूं, लेकिन कोई बात नहीं, मोहम्मद बोल रहा है कि मुझे जरूर जवार फकीर का गाना सुनाना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, डेडिकेट मोहम्मद बख्श मल्हा विलेज आंदल खान मल्हा। चले मैं कोशिश करूंगी, भाई को वैसे वेलकम कर देते, भाई आप परेशान ना हुआ करें, बस आप गदा भाई को अपना मैसेज शेयर कर दिया करें, वो आपका मैसेज हमें भेज देंगे, ठीक है, और आपको वेलकम कहते हैं।

सायमा मीर कहते हैं कि सिद्रो जी जी ऐसा ही है बिल्कुल। और कह रही आओ तो दोनों साथ में चले मीरपुर खास घूमने, चलो फिर तुम जाना तो मुझे साथ में लेकर जाना जो तुमको रस्तों ना है डिटेल कोई साथ में होना चाहिए।

क्या बात है, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते जा रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं और हसीन होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ टाइम हुआ है जनाब, लेते हैं जरा न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी आप लोगों के पास आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, यही रहिएगा, मैं यूँ जाकर यूँ वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज लागू करे छॾियो वफ़ाक़ी काबीना जी केपीअ में इमरजेंसी लॻाइण जी मंज़ूरीअ खां पोइ सदर आसिफ अली ज़रदारीअ समरीअ ते सही करे छॾी ऐवान सदर जे पधराईअ मूजिबि केपीअ में सरकारी हंधनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते दहशतगर्दनि हमलनि में वाधि थी सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी ऐं लाकानूनियत जो तदारक करण में मुकमल तौर ते नाकाम रही मौजूदा हालतुनि सबबि केपी हुकूमत नथी हलाए सघिजे आईन जे आर्टिकल 232 ऐं 234 तहत सदर आसिफ अली ज़रदारी इमरजेंसी लॻाइण जी समरीअ ते सही कई दुश्मनीअ ते ख़ामोश तमाशाई थी वी रहंदासीं हिकु जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान खे ॿीहर तबाही जे किनारे ते पहुचाइण चाहे थो पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खे ख़िताब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त छा ई घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि विरिजाइण चाहिनि था इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो आहे ईअं ननून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो
3: आप सुन रहे थे GAFM KTN News.
6: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
7: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
8: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है
9: तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की
8: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन कौन सी यूज करती हो
9: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
9: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
8: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
10: सुपर वाइट

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
1: एड्रेस अमा

0: आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-200।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचणु सख़्तु सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-04-01-287 سکون اعتماد صحت مند زندگی دا قدم
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-34-95-244
4: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
5: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
6: खुशखबरी तव्हां जे पंहिंजे शहर मां
5: 3
6: खुशखबरी तव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर

0: ज़मानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनी बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-252-5786।
2: जी हा, 231-25-25-786 नेटवर्क आज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरावपुर मातिली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इस तरह से इजाफा ला रहा है कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इतने खूबसूरत कैसे हो चुके हैं, बताएं बताएं। और शर्माएं नहीं, बिल्कुल आपने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, आप उन्हें बताइएगा कि ये कमाल जो है ना सारा कमाल डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आपके चेहरे पर ऐसी ताजगी आ जाएगी, ऐसी खूबसूरती आ जाएगी कि लोग जो हैरान हो जाएंगे कि भाई पहले आपकी स्किन तो ऐसी होती थी, लेकिन आप जब से इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट वाकई आपके चेहरे पर जो है ना वाजे फर्क नजर आ रहा है। तो आप भी अगर वो वाजे फर्क देखना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है जनाब, सच्ची मुच्ची बता रही हूँ, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना, तो ये दरअसल वो चीज होती है जो कि भाई महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर एड की जाती है। उससे ये होता है कि जब आप किसी भी चीज के अंदर वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन रखते हैं ना, तो उससे आपका जो प्रोडक्ट होता है ना उसकी रिजल्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो महंगे महंगे फेशियल्स आप कराते हैं घंटों बैठ कर और हजारों रुपए वहां पर आप देकर आते हैं, तो उससे ये होता है कि जब आपको वही वाले रिजल्ट्स घर बैठे मिले मुनासिब कीमतों में बिना आपके टाइम को जाया किए, तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये चीज ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स रखा गया है ताकि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के रिजल्ट्स भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला इसीलिए बनता है क्योंकि आप लोगों को ये फेशियल वाले रिजल्ट्स दे रहा है, और इसी के साथ साथ सिर्फ 2 रातों का यूज करेंगे आपको परफेक्ट वाले जो ना निखार मिलते रहेंगे। और चाहे आप मर्द हजराते चाहे आप खवातीन है सभी लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की लगाएं जो तरीके का शाह थियण वारू आए ये भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं ना बड़े मासूम से होते हैं माशाल्लाह। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब फेशियल की इसके अंदर चीजें हैं, फेशियल का जैसा हमें रिजल्ट मिलेगा तो क्या ऐसे फेशियल की तरह ही लगाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को बताएंगे तरीकेकार जो होंगे ना वो बड़े आसान से होने वाले हैं कि आप रात के टाइम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सारे कामों काजों से फ्री हो जाएंगे, और जब आपको लगे कि अब हमने सिर्फ सोना ही है तो आप अपना फेस वॉश कर आएंगे डी स्किन फेस वॉश से, ठीक हो गया। डी स्किन फेस वॉश जो है ना आप अपने चेहरे पर फेस वॉश कीजिए, उससे आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, क्लीन रहेगी, और आपकी स्किन पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा, आपकी स्किन ऐसे रुखी सुखी सी नहीं होगी। तो आप जब अपना फेस वॉश कर आए, अच्छे से चेहरे को सुखा लिया, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। जैसे आप कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं, कोई भी नाइट क्रीम लगाने का सही तरीका बिल्कुल ये होता है कि फेस

वॉश करने के बाद आप चेहरे को सुखाकर उंगलियों की मदद से आराम से प्यार से जो है ना क्रीम अपने चेहरे पर लगा लें, ठीक है, ऐसे चेहरे पर फैला लें और इस तरह लगाएं कि आपके चेहरे पर थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है ना वो नजर आना चाहिए, यानी कि मसाज नहीं करना और प्रोडक्ट को अपनी स्किन के अंदर जज्ब नहीं करवाना। थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है ना आराम से लगाएं, प्यार से लगाएं, इस तरह की थोड़ा सा प्रोडक्ट आपके चेहरे पर नजर आए और मसाज नहीं करना हरगिज। हाथ तेज तेज अगर हाथों से आप रब करते हैं वो भी ना कीजिएगा, प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए और प्रोडक्ट जो है ना वो खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा, अच्छे वाले आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और आप हमेशा ग्लो। तो जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप दो रातें मुसलसल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई भाई बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। पर्सनली मेरे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं जिनको मैंने मशवरा दिया कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राई करके देखें, तो उन्होंने जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा कर देखी ना तो वाकई उनका जो मुझे या मैंने पर्सनली उनका चेहरा देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई भाई अब हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं भाई इन प्रोडक्ट में वाकई दमा है। अगर तुम्हारा जी स्किन सेंसिटिव आ है तभी भी तुम्हारा लगाए सको था, और नॉर्मल आ ड्राई आ कॉम्बिनेशन टाइप आ हर स्किन के मथा तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सको था, तो सब का डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूलो है। तुम्हारे लिए कोई भी स्किन अगर का भी प्रॉब्लम आए कोई भी थोड़ी स्किन सा तुम्हारे तो वहां भी खत्म थी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करना छो तो ही मेडिकेटेड फार्मूलो है। डॉक्टर्स बाबा ठाए हुआ ही फार्मूलो सो तुम बेफिक्र थी करे लगाए सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम मर्द हजरात खवातीन सभी ट्राई करे सको था। तो थोड़ा औरतन जी स्किन का थोड़ी हार्श हूँ ज्यादा मतलब थोड़ी मजबूत टाइप हूँ मर्द सोची प्रोडक्ट खवातीन जो हों असि मत चेहरे से रिजल्ट न दे तो ये ना ही बाबा तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम मर्द भी लगाए सको था औरतों भी लगाए सकन था। हर तैयार थियल आई हर स्किन ते असर ॾेखारींदी ऐं सफ़ा भलो असर ॾेखारींदी। अहिड़ो ॼण तव्हां फेशियल कराया सफ़ा महांगो महांगो फेशियल। तो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो, वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, इन्हनि मां फ़ाइदो वठो बाबा ऐं सफ़ा सोणा सोणा चिकना प्यारा हीअं चमकंदड़ थी वञो। उन खां अलावा जेको आहे ॿी अलाए कहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, चलो बिल्कुलु खोड़ सारी ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठिजो। जिन माण्हुनि अञा ताईं कोन कराई आहे अवेलेबल बाबा तव्हां छा था कयो बाक़ी हिन महिल ताईं, तव्हां बि अवेलेबल करायो, तव्हांखे नंबर ॾिनो वियो आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। तो जनाब नंबर आहे नोट कजो, ओके जी, 033-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ओके जी ट्राई ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 ॿुड़ी 312-50-25-907 ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे सघो था, यानी कि ही ॿई नंबर तव्हां डायल कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं सोणा सोणा थींदा रहो बाबा तव्हांजो बि हक़ आहे ख़ूबसूरती हासिल करण ऐं अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कंदा त तव्हां वाक़ई सोणा थी वेंदा ऐं तव्हांखे उहो रिज़ल्ट मिलंदो जेको तव्हां हमेशह हासिल करणु चाहियो पिया ऐं तव्हांखे कोई बि उहो प्रोडक्ट न ॾेई सघियो आहे रिज़ल्ट जेको तव्हां जी ख़ूबसूरती डिज़र्व करे पई, लेकिन हाणे तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अची वई आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसो ऐं असांखे फीडबैक लाज़मी शेयर कंदा कयो जंहिंसां खे बि ख़बर पए त असांजा सोणा सोणा लिसनर जेके आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए करे वाह जा सोणा थी विया आहिनि। ओके सो बिल्कुलु तव्हां सां कचहरियूं हलनि पियूं, तव्हांजा प्यारा प्यारा फीडबैक असांखे मिलंदा वञनि पिया ऐं जेके माण्हू असांखे फेसबुक ते ॿुधनि पिया बाबा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, इन सां छा थींदो आहे त असांजी जेका पोस्ट आहे न उहा इलाही सारनि माण्हुनि ताईं पहुचंदी आहे ऐं इलाही सारे माण्हुनि खे असां ॿुधाए सघंदा आहियूं त बाबा तव्हांजे लाइ बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हां सभिनी जे लाइ आहे। उन खां अलावा जेको आहे सो चाचा ठीक है मैं समझ गई सारी बातें। और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं आज नेटवर्क मुझे भी लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा सा मसला है। और मोहम्मद जमाल लिखते हैं बुआ जी हम भी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम दुनिया के सामने निशावर कर रहे हैं, हमारा भी कोई शुक्रिया करे बाबा, मां तव्हांजो शुक्रियो अदा कयां थी। मोहम्मद जमान भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया, थैंक यू सो मच। और गदा हुसैन भाई कहते हैं कि सिद्रा पासी मोहम्मद बख्श बोल रहा है कि कभी आओ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खुशबू लगा के विलेज आंदल खान मिला। अच्छा भाई तव्हांखे ख़बर आहे मां मतलबु एॾो कोन घुमंदी आहियां, सलाह न कयो ऐं तव्हां डी स्किन

अपनी क्रीम लगाईंदा रहो। दर्दे दिल कहती है कि चलो अदी साइमा मीर और आप दोनों आ जाओ, मैं लेने आ जाऊंगी। चले जी, ये तो बढ़िया हो गया। फिर वफा शहजादो मक्सी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम लाड़काना से। वफा शहजादो मक्सी कहते हैं शो जबरदस्त आए तमाजो, थैंक यू प्यारा भा। और चाचा कहते हैं कि बस आपको घबराना नहीं है, दी स्किन ब्यूटी क्रीम का फेस वॉश लगाना है। बिल्कुल ओ इया गाल। कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी फेशियल नहीं कराया, बट दी स्किन ब्यूटी क्रीम से फेशियल की रिजल्ट आ जाएगी भाई। फेशियल का इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीजें फेशियल की ऐड की गई हैं, ताकि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गांव में अगर देखा जाए तो मैंने अगर देखा है ना, कुछ गांव में ऐसा वाला सीन होता है कि जब शादियां हो रही होती है ना, तो वो जो दुल्हने होती है ना बेचारी, उनकी स्किन ऐसी खवातीन कुछ होती है जिनको ऐसे गांव में लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये जो आंटी या कोई भी ऐसी अगर औरत आकर उन्हें बताती है ना फलां ब्लीच लगा लें, फलां फेशियल लगा लें, और उनको तरीकेकार नहीं होता पता कि भाई कैसे लगाना होता है, और वो ऐसे वो तमाम हार्श वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना दुल्हन के चेहरे पर लगाकर दुल्हन की स्किन ही खराब कर देते हैं। मैंने ये बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि अक्सर गांव में हो रहे होते हैं, क्योंकि गांव में इन चीजों के एजुकेशन की जरूरत होती है, उनको पता नहीं होता, उनको जो भी चीज बताई जाती है बस वो उसके ऊपर यकीन कर ले। एक तो वो बहुत मासूम होते हैं, तो पहली बात तो इतनी ज्यादा मासूम मत बने। अगर आपको कोई भी इंसान किसी भी चीज का मशवरा दे रहा है तो पहले जरा थोड़ा उसके बारे में सोचें, अपना भी जरा जहन उसके ऊपर दौड़ाएं कि वाकई जो चीज हमें बताई जा रही है सही या नहीं। और खास करके जो दुल्हनों के चेहरों पर आप एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं, ये भी ब्लीच लगा लें, फेशियल लगा लें, ये चीज लगा लें, तो इन चीजों से गुरेज किया करें। उनकी स्किन जो है ना वो क्या पता सेंसिटिव हो, और जब आप इतनी हार्श से प्रोडक्ट उनके चेहरे पर लगा लेते हैं तो फिर मसला हो जाता है। तो ऐसा किया करें सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी से पहले, अपनी शादी के बाद और अपनी शादी के दिनों में आप डी स्किन फेस वॉश लगाएं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं। ये बहुत लाइट से प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर जो है ना फेशियल की क्वालिटीज एड की गई है, और बहुत कमाल की इसके अंदर जो है ना वो चीजें रखी गई, और साथ साथ ये मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी शादियां हो रही हैं, आपके घरों में शादियां हो रही हैं, किसी की भी शादी हो, तो उसे ये इस तरह के मशवरे ना देंगे फलां ब्लीच लगा लें और फलां फेशियल लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें, और उस बेचारी दुल्हन की स्किन ही खराब कर देते हैं। बेचारे दुल्हनों के साथ भी यही वाला सीन हो रहा होता है, तो इन चीजों से गुरेज करें, अच्छा वाला प्रोडक्ट लगाएं। हाँ, चार पैसा वधिक भरियो पर शइ सुठी वठंदा कयो, समझो था इन चीज जो भी ख्याल रखंदा कयो। चवंदा आहे न महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, हुआ गाला। पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी कीमत जी गाल कई वने, ते सफा मुनासिब पैसन में आहे। एनो भी महंगो प्रोडक्ट नाहे जो तव्हां अफोर्ड ही न करे सघो, सफा परफेक्ट पैसन में तव्हांखे मिली रहियो आहे, सफा परफेक्ट प्रोडक्ट आहे, प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे। जेके भी असांखे गोठन वारा माण्हू ॿुधनि पिया, जिन माण्हुनि खे हिन चीज जी ख़बर नाहे पवंदी त बाबा असां कहिड़ो प्रोडक्ट पंहिंजे चेहरे ते लॻायूं, कहिड़ी क्रीम असांखे लॻाइण घुर्जे, त तव्हां अखियूं ॿूटे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए छॾियो। इहो बाबा मुंहिंजो चवण आहे, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाकई तव्हां वटि सुठो प्रोडक्ट हाणे शामिल आहे, ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठी सघो था। ऐं चाहे तव्हां सिटीज़ मां आहियो या फिर वैसे इहा भी चीज आहे, अॼुकल्ह पार्लर्स में इहो घणो ट्रेंड अची वियो आहे। मुंहिंजो बि टे चार कुझु सहेलियूं आहिनि जेके पार्लर्स में बाबा पंहिंजे कस्टमर्स खे हाणे चवनि पियूं त ॿिया प्रोडक्ट त तव्हां खोड़ ट्राए करे ॾिठा, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे ॾिसंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाकई बाबा शइ ॾाढी कमाल जी आहे। सो हाणे त पार्लर्स में बि इहो ट्रेंड अची वियो आहे, त माण्हुनि खे कस्टमर्स खे ॿुधायो वञे थो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए पंहिंजी ख़ूबसूरती खे मेंटेन रखी सघो था, ख़ूबसूरती खे वधाए सघो था। सो ख़वातीन हुजनि या मर्द हज़रात हुजनि, तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा रहो, ठीकु आहे। भाई आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने वाकई धूम मचा दी है, तो अब आपकी भी बारी बनती है। जिन लोगों ने नहीं लगाई आप ट्राई करके देखिए। भाई मैं ऑलरेडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ, तभी तो इतनी प्यारी हो। और नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम। मटियारी खां तव्हां सां ज्वाइन कयो आहे, आज सॉन्ग चलाओ खुद गर्जी। अच्छा मां ॾिसां थी, बिल्कुल तव्हांजी पसंद जो गानो हलाए वठूं था। और कहते लाजवाब शो, लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच नजर मोहम्मद भट्टी भा। हनीफ अल बलोची लिखते हैं कि ये जिद है हमारी कि तुम्हें छीन ले सबसे, और हम जमाने से तकाजा नहीं करते और रो लेते हैं गोशाए तन्हाई में अक्सर, हम शहर की गलियों में तमाशा नहीं करते। वाह।

भाई पोइ तव्हां जे लाइ बि माण्हू ईअं चवंदा छा त माण्हू ॾिठा मन पोइ पहिरीं नज़र में दिलि ईअं सिलिप थी वई छो त एतिरो ख़ूबसूरत माण्हू जो साम्हूं अची वियो त वाकई बाबा दिलि त सिलिप थियणी हुई नी समझंदा कयो ॻाल्हि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो नज़र मोहम्मद भट्टी भाई लिखते हैं कि मटियारी वालो को सलाम देना ओके जी मटियारी वाले लोग हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम बोलिए जी अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं रमजान भाई ठीक ठाक चाचा कहते हैं कि हाने सर्दी पई अचे लोशन भी ठहरायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में असा लोशन बिल्कुल एड कंदासीं पर वाइटेश में लोशन आए तो तुम वो वठी सको था समझो था यस हर चीज हर मसले जो हल मुख्य लगंदो आ सदरा वट मौजूद आए तो उनका पूछना कयो हा भाई मूंखे दावतूं मिलंदियूं रहंदियूं आहिनि पर इहा अलॻि ॻाल्हि आहे हिन महिल ताईं काॾे विया कोन आहियूं चलो इंशाल्लाह करी त वेंदासीं और इन खां अलावा हिदायत लाइ कहते कि गाना हलेगा या नहीं हलेगा हलेगा सबर करो तारिक भाई कहती अस्सलाम वालेकुम आयशा मेमन अठेड़ी सिटी से हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इनको आयशा प्यारी को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आयशा आप हमारे साथ मौजूद हैं और कहती हैं अच्छा आयशा हमें सलाम बोल रही है वालेकुम अस्सलाम आयशा स्वीटी आपको वेलकम हो गया

भाई तव्हां जो बि छको लॻी वेंदो जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा. अच्छा बिलाल आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम कहते मोहतरमा मिस माँ अज भी आयम भल्लो कयव बाबा भल्लो कयव छाला खुश आयो वेड़ो बाबा पानी सीट वठी. अच्छा महबूब भा तव्हांजी का फरमाइश कई आहे न उहा मूंखे नात जी फरमाइश कई आहे. सो नात तव्हांखे ख़बर आहे प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में लॻाईंदा आहियूं. मां कोशिश कंदमि तव्हांजे लाइ नात जेका आहे न उहा सुभाणे वारे प्रोग्राम जे स्टार्टिंग में हलाए वठंदासीं. ठीकु आहे. सो थैंक यू तव्हांजो मोहबत वारे प्रोग्राम ॿुधो पिया. और दारावान से डॉक्टर वाहिद बख्श हमारे साथ है और मोहम्मद अली जोगी. अच्छा डॉक्टर साहब इस बारे में जरा मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है तो आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा लीजिएगा. और ये हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद मुस्कान जी. डी स्किन ब्यूटी क्रीम प्रोग्राम अच्छा है. ये दो कलाम है चमन मिराली का. चलें शमन का ये गाना तो मैंने पहले से लगा लिया आपके लिए. चलें एंजॉय कीजिए. और चाचा कहते हैं कि बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. माँ बिल्कुल तव्हांजो गानो हलाईंदमि वेरो तव्हां पंहिंजी सीट ते.

बिलाल खे पक से चकू लगी वेंदो हा बाबा ट्राई करे दिसो मोहम्मद जमान खे बुआ जी मुझी नानी भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लवर बन चुकी है और यूजर भी आहे माशाल्लाह सफा यंग पई नजर अचे मुझी नानी साहिबा वाह साई वाह वाह साई वाह यो कमाल अथव दिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नहीं भाई पंखा मैंने बंद कर दिया है पंखे की वजह से मेरी आवाज मुझे लगता है थोड़ी ऐसे डबलिंग आप लोगों को मिलती होगी तो इसीलिए देखिए आप लोगों के लिए मैं गर्मी में बैठी हुई पंखा भी बंद कर दिया जो छा खपे वालमो स्किन ब्यूटी क्रीम न था वो हाँ पोस्ट के लाइक शेयर भी कौन था कर

0: सियारे अचण जो त हाणे मूंखे लॻे थो को इम्कान कोन्हे को एतिरी गर्मी आहे तोभा छा ॿुधायां लाडकाना में
1: इट्स 2:30 PM दिस टाइम चेक इफ
2: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
4: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
7: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
0: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
10: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अव्हां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारान शुगर मिल्स मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ए दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदी मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो ए थाओ खणी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
6: मातली ए आसपास जी आवाम लए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
11: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
12: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
13: सुनते रहो GFM 90.4
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
14: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
14: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03132525786
14: जी हा 2315525786
8: GFM रेडियो नेटवर्क
14: सिंध जो आवाज़

बारे बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम आ चुके हैं आप लोगों के साथ साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, बिल्कुल जी सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज करते जा रहे हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करते जा रहे हैं, हसीन और प्यारे प्यारे बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा अलावा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो आप लोगों के लिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद। बाकी जो लोग हमें साइलेंट होकर सुन रहे हैं उनको भी वेलकम एंड खुश आमदीद। ओके, ये बात हो ही जाती है कि आप जरा अपने होने का एहसास दिला दिया करें ताकि हमें जरा पता होना चाहिए कि आप जिंदा हैं। हाँ जी, वरना आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं या फिर यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, ये आप सब लोगों के लिए है। मतलब तव्हां जेके भी माण्हू असां खे ॿुधो पिया, तव्हां सब माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, त तव्हां जे लाइ का टेंशन नहीं थी। तो बाबा असांजी स्किन थोड़ी सेंसिटिव आहे या फिर कॉम्बिनेशन टाइप आहे, को प्रोडक्ट तेजी सा सूट ना ही करंदो, तो तव्हां हर स्किन जे मथां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सको था। ही टू इन वन फार्मूलो आहे, यानी कि जदी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे रिजल्ट्स एड़ा मिलंदा ॼण तव्हां कोई फेशियल कराए आया आहियो। तो तव्हां मर्द हज़रात ख़वातीन सभी लगायो ऐं सोणा थी।

भाई इसने सारे रंगों की फरमाइश कर दी। तो ऐसा वाला सीन नहीं वाकई कि आप सिर्फ काला जोड़ा पहनेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। आप भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा चुके हैं, खूबसूरत हो चुके हैं, तो अब आप कोई भी कलर पहन लीजिए, आपके ऊपर जचेगा ही सही। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, खूबसूरत हो जाइए। और खूबसूरत रहने के लिए खूबसूरती का ख्याल रखना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। तो खूबसूरती का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। उनके अलावा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो था बिल्कुल जी तमाम जो मोहब्बत दुआएं पोस्ट के लाइक एंड शेयर करी छींदा है। पर जिन अजा ताईं कोन कयो आहे तव्हां बि करे वठो बाबा, कोई पैसा न लॻंदा आहिनि, मुफ़्त जो।

मेरी क्या बात है, वक्त इतना तेजी से गुजरता जाता है पता ही नहीं चलता। दरअसल ये वैसे हमारी जिंदगी गुजर रही है और वक्त कितना जल्दी बदल जाता है ना। अब ऐसा वाला सीन हो चुका है कि पहले जब हम खिलौने देखते थे, अब खिलौनों को बेचने वाले देखते हैं कि कितनी बड़ी उम्र में लोग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। पहले ये चीज हमें जो है ना वो थोड़ी मतलब उसके ऊपर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन अब शायद वक्त इतना तेजी से बदल चुका है कि अब हम उन चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जो चीजें हम पहले देखा ही नहीं करते। तो आप भी अगर ऐसा कोई इंसान रास्ते पर देखें, राह चलता हुआ, कुछ बेचता या कोई मेहनत करता हुआ, खास करके जो ओल्ड एज पे हैं, बहुत सारे लोग हमारे आमने सामने से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसे मदद जो है ना वो कर लिया करें और मदद ऐसे किया करें कि अगले इंसान को शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो मदद तो कर देते हैं लेकिन वो मदद उनकी जो होती है ना जरा ऐसी होती है कि अगला इंसान जो जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो शर्मिंदा ही हो जाता है। तो ऐसी मदद करने से जरा गुरेज करें, क्योंकि अक्सर जो आपकी मदद होती है ना वो ऐसी बात मुझे लगता है कि आपको भी पता ना चले, बस आप किसी की मदद कर दिया गए। और साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है।

0: कसम। ओके जी हबीबुल्ला थेबू के दिया आजे सिद्रा मुस्कान सॉन्ग बुधरायो। ओके अब्दुल्ला महर के थे मीरपुर खास से वेलकम सिस्टर साइमा मीर सिस्टर दिलरुबा दर्दी दिल को एंड चाचा को भी। ओके जी ओके महबूब अली मोरो सिटी से सुन रहे कहते हैं कि कुंज आपी जो आपको नाम लेते हैं सिडो बोलते हैं या सिद्रा बोलते हैं उनको कहें कि सिद्रा कुंज बोल भाई आप ही बोला करें सिद्रा कुंज बाकी तो जिनकी जो मर्जी होती वो बोलेंगे ना बस ये आप ही बोला करें सही लगता है। और उनका अलावा जेको आ सो अदा कहते हैं कि अदा ही वडो मसलो ना है हा उहा ही गाल जरा मुझे जहन में अच्छी वही तमाम सही आए पांजी जगह ते पर हिकड़ी या भी गाल आए तो ये असाजे स्टूडियो जेको आ ना डाढो गरम थींदो आ इन में मतलब ही चीजों जेके ना वो हीट कढंदियूं आहिनि तो उन वजह सां नॉर्मल अगर टेम्परेचर डिठो वञे तो एतिरो गरम ना हूंदो पर असांजो स्टूडियो ॾाढो गरम हूंदो आहे।
1: तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
0: ओके okay, रमजान भाई वेलकम हो गया आपका अभी पता चल गया पक्के पाकिस्तानी है और आपने गजल शेयर कर दी है लिखो था अच्छा सिंधी गजल आ शायद ओके लिखो था आखिंदा इशारा तू न समझा ही वे सकारा तू न समझा सिकंदा आहिन सदाई तोलाए नेण उन्यारा तू न समझा वेठो भरिया थो अगियां तुझे थधा शुकारा तू न समझा छॾे कमकार अचान तो ॾे ही सब लामारा तू न समझा जो हीणा आहिनि ही हाल असांजा फिरी प्यारा तू न समझा मर्ज़ी हलाए तू भेण सिदरा पंहिंजी मुंहिंजा अर्ज़ खुदारा तू न समझा अखियुनि जा इशारा तू न समझा ही वेसकारा तू न समझा जी जी चाचा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ली फिर आप कोई कौन सा भी कलर पहन रहे हैं उसे मतलब आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत ही लगेगी तो खूबसूरतियाँ हो जाएंगी जब आपके चेहरे पर मुकम्मल तब आप कोई भी कलर पहन लीजिए आप अच्छे ही लगेंगे अच्छे मतलब गोरे चिट्टे प्यारे प्यारे। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मगर इतना रखना ख्याल ओके ओके सब्र करें थोड़ा सा। बिलाल लिखते हैं कि चांद की चांदनी भी मानित पड़ जाए चांद की चांदनी भी मानित पड़ जाए जुल्फों को वो जब चेहरे से हटाए यूं तो सादगी में भी कमाल है मगर बन सवर कर तो वो कयामत ही ढाए। हाय हाय हाय।

0: अच्छा शायरी लगे पे थोड़ी सोलड़ी हुई न जे करे का गलती को न थी।
1: सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर।
0: हाँ यो मजे की गाल है सर्दी में वरी स्टूडियो घणो थदो ना आए हों बाहर भले केतरी भी सर्दी रहे पर स्टूडियो मतलब भी मजो ही दुआ स्टूडियो में वेण सा जण हीटर तो हले फायदा है बबल सिर्फ सर्दी में जका लगे तो इन चक्कर सिर्फ महीनो ही जनवरी वारो बाकी तो इन मतलब सर्दी जो को चांस ही कोने को पर इहा भी गाल है तो कुछ मानू वरी सोचिंदा है ना तो बबा जका डी स्किन ब्यूटी क्रीम है या सिर्फ असा छा सर्दी में लगाए सघूं था वरी गर्मी में तव्हां थोरो सोचींदा त बाबा क्रीमूं नथियूं लॻायूं वञनि असां खां या कुझु वरी प्रोडक्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके गर्मियुनि में तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजे चेहरे ते एक्नी निकिरी ईंदा आहिनि पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम में अहिड़ो कोई बि सीन कोन्हे को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां लॻाईंदा त चाहे सर्दी हुजे चाहे गर्मी हुजे तव्हां हर स्किन जे मथां लॻाए सघो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर मौसम जे लाइ आहे हर स्किन जे लाइ आहे हर माण्हू जे लाइ आहे ऐं जना बि मेडिकेटेड फार्मूलो आहे सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो तव्हांखे यकीननि सुठी लॻंदी। नन्ना बिलाल सिंधी वारी शायरी जेका आहे सिंधी मतलब शायरी जो इतिहास गवाए मूं कॾहिं बि सही कोन पढ़ी आई हुन अधे जी सही पढ़ी हुयसि सो इहा ॻाल्हि शायरी मतलब सवली हूंदी ईअं आहे बाक़ी हाणे मां सिंधी शायरी जेका सही पढ़ां ईअं थी नथो सघे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचजांइ जी वठी अचे पंहिंजे हथ सां ई ॾियो।

हाँ बाबा, जीना सिर्फ मेरे लिए, समझो मुनव्वर भाई कहते हैं। मुनव्वर अली मुगल मीरपुर खास से बहना सिद्रा मुस्कान, सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट की मदद कर दो, किसी को पता नहीं लगेगा वरना मैं। अरे भाई ऐसी क्या बात है, आप मेरे पास होते तो मैं आपको रोज डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट करती, पर बात यह है कि आप ही मीरपुर खास में रहते हैं वहाँ मेरा आना जाना होता नहीं है, तो ये कैसे चलेगा बताएं मुझे।

0: करीब आया।
1: बस मुनवर भाई आप ऐसा कीजिए, फिलहाल तव्हां पाण वठो ई समझो त तव्हां खे तव्हां जी अदी सिदरा गिफ्ट करे छॾी आहे। सही आहे, ये ऑप्शन बी है।

हा भई ससा पंहिंजे हथ सां धूड़े ॾाढो भलो गानो आहे ॿुधी करे वी आई पी वाई बची वई और आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे नहीं बताया करे मुझे शर्माईंदा न कयो इन मामले में त तव्हां जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई आहे वरी तव्हां मूंखे ॿुधाए न सघंदा आहियो बाबा तव्हां लगायो जी स्किन ब्यूटी क्रीम दिल खोले ऐं तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा रहो त भाजी असां जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए वरिती आहे ऐसन कंहिं ॾींहुं असां वटि अची वियूं आहिनि सर्दियूं ॻोठ में त सिटी में देर आहे हा सिटी में सही था चओ थोरी देर आहे थोरी छा मतिलबु इलाही देर आहे और अधो चए थो अहिड़ा गाना हलाईंदो अला ॾाढो बाक़ी गानो भलो आहे दिल चए थो तू बि सज़ा पंहिंजे हथ सां ॾे छो किशोर भाउ सज़ा जे हक़दार तव्हां त न आहियो मोहम्मद सलमान कुंभर भाई बाजी जी अदा तव्हांजो कॉमेंट पढ़ियो त हुयो हिकिड़ो कॉमेंट कयो था वरी चओ था बाजी कॉमेंट पढ़ उहो पढ़ी छॾियो ऐं हीउ बि पढ़ी छॾियो हाणे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो सही आहे।

जी जी, इन्होंने शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है सिर्फ कॉपी गाने बनाने का. देखा जाए तो ऐसा वाला सीन है. और मोहम्मद जमान कहते हैं नन्ना ताऊ ही लिखो जेको चंद आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वरती हूँ अच्छे जा भले केडी मांगी मिले डी स्किन क्रीम वरती हूँ अच्छे जा. हाँ ओए सबने के ये जो भाई चाचा ता झंडो मरी वारन के भजा छो अला एडो भजा छो वरी वो बेचारा जाहिर ही कोने थिया. तौबा एडो भी केंजे पोया ना पो जो अगलो मानू भजी वनु. तौबा साईं तौबा. तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठ जो सही आ चाचा आई तमा सब वठो आई ही डाडो भलो गानो हलायो है. जिन गाने के भी एंजॉय करना सी.

मुनव्वर भाई कहते हैं कि बेना अल्लाह पाक आपको खुश रखे। नौदेरों में फरहान मेमल जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं है, मैं कल नौदेरों में आया था। अच्छा, फरहान मेमल जनरल स्टोर ते भी असान डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए वठूं था बाबा। नौदेरों में तो अवेलेबल कराए वठनासी ही वेजो आ मुझे ख्याल में। हजार भाई आई मोहम्मद मीरन जखरानी भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक आयो मजे में। और हिदायतुल्लाह कहते हैं मेरे सही बात है, किशोर भाई कहते गलती से मिस्टेक हो गया, किस चीज का, किस बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टेक भी वैसे जरूरी होता है जिंदगी के अंदर, पता चले कि कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो जरूरी होता है।

ओके जी, अब जो हम बिछड़ेंगे तो फिर दोबारा 5 बजे मिलेंगे, टेंशन ना ले। जी जी, बिछड़ने की बातें नहीं करेंगे, बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है, बिछड़ना नहीं चाहिए, खास करके अपने प्यारों से। और उन खां अलावा जेको आहे सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणंदा रहो, ठीकु आहे। अहिड़े टाइम थियो आहे तव्हां खां इजाज़त वठण जो।

0: आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट राइस कॉलेजन ड्यूटी क्रीम अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: कानून लागू कंदड़े दारन ते दहशतगर्द हमलन में वाद थी सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी इलाकन जो तदारक करण में नाकाम रही मौजूदा हालत सबब केपी हुकूम नथी हलाए सकजे आइन जे आर्टिकल 232 ऐं 234 तहत आसिफ अली ज़रदारी एमरजेंसी लगाइण जी समरे ते सही कई।

छा मुल्क दुश्मनी ते खामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं। हिकु जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान खे ॿीहर तबाही जे किनारे ते पहुचाइण थे थो। पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खे ख़िताब। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त शाही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि वरजाइण चाहिनि था। इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो आहे, ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो। केपी हुकूमत दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ वफ़ाक़ सां सरकार करण में तयार न आहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि। केपीअ जो वॾो वज़ीर मुल्क में मुआशी बहितरी नथो चाहे।

ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुकरर नोटिफिकेशन जारी जरियन मूजिब 12 जिलन जा इंतजामी मामला धार करण की तजवीज डिनी वही है। अगूणे फाटा के 8 डीआई खान लकी मरवत ए क्वाट जिलन में कंट्रोल वफाक वट हों 12 ही जिलन लाए धार सेक्रेटरी ठहंदा एक एडिशनल आईजी पुलिस भी मुकरर थी। पीटीआई केपीए में इमरजेंसी के रद्द कर छो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर है तो केपीए में इमरजेंसी जो फैसलो वड़ी सियासी गलती ए गैर जमहूरी कदम आए। केपीए जो आवाम पांजे हकन खिलाफ अड़ा कदम कदें भी कबूल न कंदो। संदन मैंडेट कानूनी ए आइनी हक आए। सूबाई खुदमुख्तियारी रद्द करण ए वफाक ए सूबे विच में टकराव पैदा करण नामुन थींदो न इस्तेहकाम। सूबन के कमजोर करे वफाक के मजबूत नथो करे सके। मसलन जो हल ताकत से न पर आइन के बालादस्ती से आए। वफाकी काबीना के इजलास में केपी पुलिस ए एहसास इदारन जो सिक्योरिटी बाबत ब रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट मूजिब 1 मार्च 2024 का 26 सितंबर 2026 तई केपीए में दहशतगर्दी के वाकन में 195% वाध थी आए। 2026 में 170 ड्रोन हमला कया वया। पुलिस ए सीटीडी के जदीद हथियार ए ऑपरेशन लाए जरूरी सामान की खोट आए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दन ए सहूलतकारन सा सूबाई हुकूमत की नाकारा पॉलिसी ए दहशतगर्दन लाए नरमी दहशतगर्दी में वाज सबब थी।

खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद ते खारजिन जे मुल्क में दाखिल थियण वारी कोशिश नाकाम। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज जी कार्रवाई में 12 खारजी मारजी विया। एक अलकार शहीद ISPR मूजिब पाक अफगान सरहद ते फायरिंग जी ॾेवठ में नायब सूबेदार हिदायत अमान शहीद थी वियो। खारजिन जे मदद करण लाइ अफगान तालिबान जे चौकियुनि तां फायरिंग बि कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सऊदी राजधानी रियाज़ में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते हुसैन जे हमले जी मज़ामत, मारिजी वियल 12 ॼणनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त शहरनि ऐं आम हंधनि ते निशानो बणाइण क़बूलण जोॻो न आहे। आलमी भञकड़ी कंदड़नि हमला बंदि कया वञनि।

अमरीकी सदर सेनेट ला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मोहम्मद अल सैद के जिहादी करार दई छो। अमरीकी मशीगन में कें जिहादी के सेनेटर थियण नथो चाहियां। असा ईरान के एटमी हथियारन तई पहुंचण वारी कोशिश खत्म करे छी आहे। बाइडन के दौर के भेट में हाणे पेट्रोल जूं कीमतूं इन ताईं घटि आहिनि।

0: वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह चीन जे दौरे ते रवानो थी वियो। वॾे वज़ीर सां गॾु वफ़द में शर्जील इनाम मेमण, जाम खान छोरो, कासिम नवीद ऐं मोहम्मद बख्श मार शामिल। वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह वफ़द समेत चीन जे दौरे दौरान सिंध में सीड़पकारी आणण लाइ अहम मुलाक़ातूं कंदो। मोहसन नकवीअ खे ॿुधाइण चाहियां थो त अञा सिंध जा 7 करोड़ माण्हू जेरा आहिनि। हाणे ॿिटी पॉलिसी न हलंदी, सूबनि जे हक़ में बयान ॾींदड़ वज़ीरनि खे घर भेड़ो कयो वञे। एसटीपी सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी जो हैदराबाद में एसटीपीअ जे मेज़बानी हेठि सिंध मोजीअ मां क़ौमी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। डॉक्टर कादिर मक्सी चयो त सिंध खे विरिहाइण सां मुल्क में बोहरान ख़तम न थींदा। मुल्क बुनियादी मसइलनि ते ध्यान ॾियनि एमकेएम जे रैली ॾिसी यकीन थो थिए त कराचीअ में रहंदड़ माण्हू बि सिंध जो विरांगो नथा चाहिनि। सिंध जे विरांगे ऐं नवनि इंतज़ामी यूनिट जे क़याम बाबति तजवीज़ूं ख़तम करे सिंध जे वसीलनि ऐं आईनी हक़नि जो तहफ़ यकीनी बणायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात
7: औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मिलाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूम, एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
6: जी हा, 231-25-25-786।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारहान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर

0: भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाव खी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा।
5: 03132525786।
6: जी हाँ 2131-25-25-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।
7: Peace and heart.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: एक चीज में क्लैरिटी है कि हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के आप किसी भी सूरत में फेडरेशन की कोई और फॉरेन पॉलिसी और सूबे की कोई और फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती. और वहां पे आपने देख लिया कि कितनी दफा हम लोगों का क्या स्टांस था और वहां का क्या स्टांस था. और बार बार ये होता रहा, एक दफा भी नहीं, काफी दफा होता रहा. तालिबान के साथ उनके कनेक्शंस कोई ढकी छुपी बात नहीं है. मैं और कोई बात नहीं करूंगा, आप में से चार पांच लोग प्लान कर लें, अभी उन डिस्ट्रिक्ट्स में चक्कर लगा लें, अगर अल्लाह ताला खैरियत से रखे वो आपको वापस ले आए, मुश्किल है कि वापस आए. इस टाइम हालात वहां एक्चुअल में खराब है जिसको ठीक करना है, बट वो लोग पूरा जुलूस निकाल के ले गए. एक बंदे को कुछ उन्होंने नहीं कहा, ये नॉर्मल चीज नहीं है. एक तरफ एक दिन पहले वहां आप छाते हो रहे, अगले दिन वहां से इलाके से आप गुजर जाएं और कोई कुछ ना कहे, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है. अब दहशतगर्दी के ऊपर हमारा सिर्फ एक चीज थी कि ये नहीं हो सकता कि हम लोग दहशतगर्दी के ऊपर अपने फौजी जवान या पुलिस वालों की रोज शहादतें करवाएं और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसकी ओनरशिप के लिए भी तैयार ना हो. ये बकायदा तौर पे हर दिन की बुनियाद पर हो रहा था. पुलिस के वसाइल के ऊपर उनके फिगर्स और हमारे फिगर्स में काफी तादाद है. वो कहते हमने दिए, हम कहते आपने पैसे तो दे, आपने लिख दिए, मगर अगर प्रैक्टिकली उनको मिले कि नहीं, हमारे लिए मसला वो था. दहशतगर्दी आप किसी भी सूरत में अकेले नहीं लड़ सकते, उससे आपको मिलकर लड़ना है. अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थी, या तो हम इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर शहादतें करवाते रहते या इस चीज को खत्म कर दें. तो ये जो मुश्किल फैसला हमने किया है, ये इसकी एक बाकायदा बैकग्राउंड है. बाकायदा इसको अवॉइड करने के लिए जिस हद तक हो सकता था हमने कोशिश की है. 195% अगर दहशतगर्दी इंक्रीज हो रही है तकरीबन डेढ़ साल में, तो वो कोई छोटी चीज नहीं है. और शहादतें भी तकरीबन 31 महीने में 113% इंक्रीज हुई हैं. आप कोई चीज ले लें, 518 पुलिस वाले शहीद हुए हैं ये पिछले साल डेढ़ साल के अंदर, जनवरी 2024 से लेके. और आप कहते हैं कि नहीं, हमने तो बजट दे दिया आपको, 20 अरब का बजट दे दिया. अरे भाई, आपके खिलाफ पूरी की पूरी जंग हो रही है. अब अगर आप कहें कि हमने 20 अरब देके बहुत बड़ा पुलिस पे एहसान कर दिया है अपने सैलरीज और उसके अलावा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है. तो दूसरा ये कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि नहीं, हम दहशतगर्द को भी पहले डिफाइन करेंगे कि ये दहशतगर्द है कि नहीं है. एक बंदा आप पे फायर कर रहा है, आपके लोगों को शहीद कर रहा है, तो आप उसके ऊपर भी डेफिनेशन के लिए बैठेंगे. तो खैर, बहुत सारे मसाइल थे जो उनकी गवर्नर से रिलेटेड थे, लेकिन हम मेरा जाती तौर पर हमारा वजारत दाखिला का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि इस सारी चीज का सियासत से 1% ताल्लुक नहीं है, और हम प्योरली इसको दहशतगर्दी की बुनियाद पर देख रहे थे. और उनको सिर्फ दहशतगर्दी की बुनियाद पर हम अब ऑन बोर्ड करना चाह रहे थे कि अगर वो हमारे साथ इस पे आ जाएं तो बहुत अच्छा हो. और यकीन करें, अगर उस दिन वो एग्रीमेंट हो गया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती. उसके बाद भी अगर कल रात भी अगर उनकी तरफ से हां आ जाती तो ये चीज ना होती. पूरी लीडरशिप ने हतुलमकान कोशिश की है कि ये सिचुएशन ना बने. आप उनसे जरूर पूछें कि कौन लोग थे जो उनके मास्टरमाइंड थे, जो हर चीज को सबोटाज कर रहे थे, और किस तरीके से वो हमसे एग्री करते थे. और उसके बाद इसमें चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे पीएमएलएन है, दोनों के डेलीगेशन मौजूद थे, आप दोनों से पूछें. तो मजबूरन हमें ये करना पड़ा और अल्लाह ताला ने चाहा तो एक दफा ये जो डिटेल में लॉ मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे कि जो चीजें आज इम्पोज हुई हैं उसके बाद मैं सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे और इस दहशतगर्दी की जंग में हमारी फौज को, हमारी पुलिस को, हमारी पैरामिलिट्री को कामयाबियां दें ताकि हम एक होके नेक नीति के साथ इस जंग को लड़ सकें।
7: बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आज जो बातें वजीर दाखला ने की हैं ये सारी बातें वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को इस बारे में मशवरा देने से पहले काबीना का एक बहुत तफसीली इजलास हुआ, आप लोग उस पे बारे में खबर भी देते रहे, जो तकरीबन दो घंटे से ज्यादा जारी रहा और उसमें जो रेलिवेंट महकमे हैं उन्होंने रिपोर्ट्स भी दी। जो खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नर साहब ने कुछ बहुत अलार्मिंग चीजें थी जो कि एक चिट्ठी के जरिए वफाकी हुकूमत को बताई क्योंकि वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं और उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की जो कि आर्टिकल 234 में दर्ज है कि अगर सूबाई हुकूमत जो है वो इस तरह से चलाई जा रही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है सूबे में और जो रेट ऑफ गवर्नमेंट है वो भी नजर नहीं आ रही और बजाय उसको दुरुस्त करने के आप अपनी पॉलिटिक्स को फौकियत दे रहे हैं और जो लोगों की जानो माल है और जो सूबे की फलाह है और जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है उसको पसे कुछ डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की, इसके साथ साथ बहुत सारा मटेरियल और रिपोर्ट्स जो कि वजीर दाखला ने आपसे शेयर की हैं जिनमें चंद अलार्मिंग चीजों में से एक जो सबसे अलार्मिंग चीज थी कि पिछले दो से ढाई साल में दहशतगर्दी के वाकयात में जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के वाकयात जो कि रिपोर्टेड वाकयात हैं उनमें 196% इजाफा हुआ है। यानी कि अगर एक वाकया होता था दो तीन वाकयात पे बात आ गई और तकरीबन 200% इजाफा और जो शहादतों की और जो जख्मियों की तादाद और जो इंस्टॉलेशंस की तबाही और जो व्हीकल्स की तबाही है उनके नंबर्स में भी उसी तरह से शदीद इजाफा था। उसकी एक सूरत तो ये थी कि सूबाई हुकूमत वफाक के साथ मिलके अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलके वो जंग जो है पूरी तनदही से लड़े, लेकिन आपने खुद देखा ट्रेंड्स में कि अनफॉर्चुनेटली जो ज्यादा हमले हैं और जो ट्रेंड था वो अफवाज पाकिस्तान पे, केपी पुलिस पे। और
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
8: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में।
5: अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
9: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुन जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
12: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन खे लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
13: मातली ऐं आसपास जी आवाम

0: उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ाम मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842। अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण, औरस बीमारियुनि जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347 32 41 230।
4: कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे न खुश बीरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमे आहिन चार अंजू खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चामरन जी खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल वीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0307-94-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ाम मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 0310-31-43-842।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली।

0: और माटली की आवाज GFM 90.4
1: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: एमरजेंसी लगाए छी 11 रुकनी सलाहकारी काउंसिल भी कायम कानून वारे वजीर आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीरन से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो ता जे सदर आसिफ जरदारी आइन मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में 200% इजाफो थी वयो। घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो तो सूबे में एहतजाज कंदड़ फौरी तौर पर अमन नमूने छिड़ वछड़ थी वापस हलया वजन।

0: छा मुल्क दुश्मनी ते खामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं। हिकु जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान खे ॿीहर तबाही जे किनारे ते पहुचाइण चाहे थो। पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारी हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ वफ़ाक़ी काबिना इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त छा ही घड़ी घड़ी पंहिंजी रांदि वरजाइण चाहीं। इस्लामाबाद ते ॿीहर चढ़ाईअ जो मनसूबो जोड़ियो वियो हो, ईअं न थींदो ऐं कानून पंहिंजो रस्तो अख़्तियार कंदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वफ़ाक़ सां सहकार करण में तयार नाहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु लफ़्ज़ बि न पिया ॻाल्हाइनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो वॾो वज़ीर मुल्क में मुआशी बहितरी नथो चाहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी लागू थियण खां पोइ डॉक्टर मोहम्मद फ़ख़्र आलम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुक़रर, नोटिफिकेशन जारी। ज़रियनि मूजिब 12 ज़िलनि जा इंतज़ामी मामला धार करण जी तजवीज़ डि॒नी वई आहे। अॻूणे फाटा जे 8 लखी मरवत ऐं कुहाट ज़िलनि में कंट्रोल वफ़ाक वटि हूंदो। धार सेक्रेटरी ठहंदा, हिकु एडिशनल IG पुलिस बि मुक़रर थींदो। PTI ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसीअ खे रद्द करे छॾियो। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी जो फ़ैसिलो वॾी सियासी ग़लती ऐं गैर जमहूरी क़दम आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जो अवाम पंहिंजे हक़नि ख़िलाफ़ अहिड़ा क़दम कॾहिं बि क़बूल न कंदो। संदन मैंडेट कानूनी ऐं आइनी हक़ आहे। सूबे ख़ुदमुख़्तियारी रद्द करण ऐं वफ़ाक़ ऐं सूबे विच में टकराव पैदा करण सां न अमन थींदो ऐं न ई इस्तेहकाम। सूबनि खे कमज़ोर करे वफ़ाक़ खे मज़बूत नथो करे सघिजे। मसलनि जो हल ताक़त सां न पर आइन जी बालादस्तीअ में आहे। KPA जे अवाम जे हक़नि लाइ हर जमहूरी फोरम ते आवाज़ उथारींदासीं। वफ़ाक़ी काबिना जे इजलास में ख़ैबर पख़्तूनख़्वा पुलिस ऐं हसास इदारनि जूं सिक्योरिटी बाबति ॿ रिपोर्ट्स पेश। रिपोर्ट मूजिब 1 मार्च 2024 खां 26 सेप्टेम्बर 2026 ताईं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दीअ जे वाकनि में 195% वाध थी आहे। 2026 में 170 ड्रोन हमला कया विया। पुलिस ऐं CTD खे जदीद हथियारनि ऑपरेशन लाइ ज़रूरी सामान जी खोट आहे। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ऐं सहूलतकारनि सां सूबाई हुकूमत जी नाकारा पॉलिसी ऐं दहशतगर्दनि लाइ नरमी दहशतगर्दीअ में वाध जो सबब थी।
1: अनोखा शहर है ये कराची, 24 घंटे धड़कता है, बेचैन रहता है कल के इंतजार में, हर पल मोहताज।
0: ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में पाक अफ़गान सरहद ते ख़ारिजनि जी मुल्क में दाख़िल थियण वारी कोशिश नाकाम। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज जी कार्रवाई में 12 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया, हिकु अहलकार शहीद। ISPR मौजे पाक अफ़गान सरहद ते फायरिंग जी ॾेवठि में नायब सूबेदार हिदायत अमान शहीद थी वियो। ख़ारिजनि जी मदद करण लाइ अफ़गान तालिबान जे चौकियुनि तां फायरिंग बि कई वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सऊदी राजधानी रियाज़ में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ते हुसैन जे हमले जी सख़्त नज़र में मज़म्मत। मारिजी वियल 12 ॼणनि जे वारसनि सां ताज़ियत जो इज़हार। वज़ीर आज़म चयो त शहरनि ऐं अहम हंधनि ते निशानो बणाइण क़बूलण जोॻो नाहे। आलमी भञकड़ी कंदड़ हमला बंदि कया वञनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सेनेट लाइ डेमोक्रेटिक उमेदवार मोहम्मद अल सैद खे जहादी करार ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त मशीगन में कंहिं जहादीअ खे सेनेटर ॾिसण नथो चाहियां। असां ईरान जी एटमी हथियारनि ताईं पहुच वारी कोशिश ख़तम करे छॾी आहे। बाइडन जे दौर जी भेट में हाणे पेट्रोल जूं क़ीमतूं इंतिहाई घटि आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सुनी

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
3: सुपर वाइट।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
9: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे दी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों ए थाओं खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ए आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू

0: 8631 6 3.
1: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252578 6
5: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: जी मुफ़्त फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीजनि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक 03130863163।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वी

0: मातल रेडियो जी एफ ए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
0: जी हा, 3135525786।
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: प्रांत का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: नोटिफिकेशन मूजिब फौज इंतजामिया की मदद लाइ मुकर हूंदी शहरनि जी जान माल ऐं सरकारी मिल्कियतुनि जी सिक्योरिटी फौज जी ज़िमेवारी हूंदी फौज इमरजेंसीअ जे मुदे ताईं सूबे में मुक़रर रहंदी गवर्नर ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी एच क्यू सां मुशावरत सां नफ़री मुक़ररी कराईंदो मिल्ट्री ऑपरेशन्स डायरेक्टोरेट सां गॾिजी दस्तनि जो अंग तय कयो वेंदो पाक फौज जी मुक़ररी बाबति हुकुमनामो ईंदड़ गज़ेट ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 में शाया कयो वेंदो सदर आसिफ ज़रदारी केपीए में इमरजेंसी लागू करण वारी वफ़ाक़ी काबीना जी समरीअ ते सही करे छॾी ऐवान सदर जी पधराई मूजिब ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सरकारी हंधनि ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि ते दहशतगर्द हमलनि में वाधि थी सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी ऐं लाक़ानूनी जो तदारो करण में नाकाम रही मौजूदा हालतुनि सबबि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत नथी हलाई सघिजे आइन जे आर्टिकल 234 ऐं 234 तहत सदर इमरजेंसी लॻाइण जी समरी ते सही कई

मार्शमेलो से भरे रिच चॉकलेट में डूबे हुए सॉफ्ट बिस्किट्स जो है मस्ती का पॉज।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड में सूर, चेल में सूर।

0: और माटली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 माटली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
2: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न, खुश ऐं बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट। पर यू किए तो के खपे सुपर

0: ट्राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: यादि रखंदा डॉक्टर अतीगा सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां अॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
5: एड्रेस ददीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी 0370-3495-244
6: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजनि खे लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं नोट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर पास CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा निज़ामाणी

0: मेडिकल सेंटर अवाम की खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-43-843-842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331-252-5786।
4: जी हाँ 2315-2576।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त अॼु सदर ज़रदारी आइन मुताबिक़ ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी लॻाई आहे। केपी में इंतिहा पसंदीअ में 200% इज़ाफ़ो थी वियो। अहिड़ा क़दम ख़ुशीअ सां नवाम जी जान हिफ़ाज़त ज़रूरी आहे। गवर्नर केपी सूबे बाबति वफ़ाक़ सां ख़दशनि जो इज़हार कयो हो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त 1 महीने खां सूबाई हुकूमत खे आन बोर्ड आणण लाइ कोशिशूं कंदा रहिया। सीआईए ऐं दहशतगर्दीअ जे राब्तनि में को बि शक न आहे। धरणो को मसलो न हो, असुल मसलो दहशतगर्दी आहे। जेयूएस सरबराह मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज खे जमहूरियत ते राताहो करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान जो चवण हो त इन फैसले ख़िलाफ़ हू अवाम सां राब्तो कंदा, पार्लियामेंट जे अंदर ऐं ॿाहिरि पंहिंजो किरदार अदा कंदा रहंदासीं। वज़ीर आज़म कुझु कयो हो पर बाद में हुकूमत पोइते हटी वई। वफ़ाक़ी सरकार खैबर पख़्तूनख़्वा में छॾी नोटिफिकेशन जारी। आइन जे आर्टिकल 245 तहत सूबे में फ़ौज मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। मिशन मूजिबि फ़ौज जी मदद लाइ मुक़रर हूंदी। शहरनि जी जान माल ऐं सरकारी मिल्कियतुनि जी ज़िमेवारी हूंदी। फ़ौज इमरजेंसीअ जे मुदे ताईं सूबे में मुक़रर रहंदी। गवर्नर केपी जीएचक्यू सां मुशावरो कराईंदो। मिल्ट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट सां गॾिजी दस्तनि जो अंग बि तय कयो वेंदो। पाक फ़ौज जी मुक़ररी बाबति हुकमनामे में शाया थींदो। खैबर पख़्तूनख़्वा में एमरजेंसी लागू थियण खां पोइ डॉक्टर मोहम्मद फ़ख़्र आलम केपीअ जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुक़रर। नोटिफिकेशन जारी। ज़रियनि मूजिबि 12 ज़िलनि जा इंतज़ामी मामला धार करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। अॻूणे फाटा जे 8 डीआई खान लखी मरमत ऐं कोहाट ज़िलनि में कंट्रोल वफ़ाक वटि हूंदो। 12 ज़िलनि लाइ धार सेक्रेटरी ठहंदा। 1 एडिशनल आईजी पुलिस बि मुक़रर थींदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: समत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जी पहली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन अर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंह के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: जेकर तवां के मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी जी सर्जिकल कैंप। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल्क कालू। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, ऑर्डर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे। नोट, लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: तव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी राव दिल टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबर

0: डॉक्टरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटीन जे लॉ कॉलेज लाइ ब बोर्ड कायम, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराची तरफ रवानदा। विख विख ते इस्तक़बाल गुलन जी वर्खा। सखर में ज़ियाती बाद औरत ते तशद्दुद, केस दाखिल, ब जवाबदार गिरफ़्तार। एंटी करप्शन खाते जे अख्तियारन तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबत शिकायतुन ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो। हेडमास्टरन खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो। 633 नवां ऐं अपग्रेड सरकारी स्कूल एनजीओज खे ॾियण जो फ़ैसिलो। सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथो ई खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। तालीम जो वज़ीफ़ सरदार अली शाह। कोटड़ी बैराज ते पाणी ज़हरीलो थियण जी तस्दीक, पाणी खोट सां मसला वधनि था, जाम खान शोरो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहानी निज़ाम, नौजवाननि जा ख़दशा ऐं हुकूमत जी ज़िमेवारी। एंटी करप्शन खाते जे इख़्तियारनि तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो। नए तरीक़ेकार तहत एंटी करप्शन जी जांच टीमुनि खे शुरूआती मरहले में स्कूलनि जे सरबराहनि हेडमास्टरनि खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ मुख़्तलिफ़ सरकारी स्कूलनि जे हेडमास्टरनि खे एंटी करप्शन खाते पारां हिरासा करण वारनि शिकायतुनि खां पोइ तालीम खाते जे सिफारिश ते एंटी करप्शन इख़्तियारनि स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति ईंदड़ शिकायतुनि जी जांच जे हवाले सां नओं तरीक़ेकार जोड़ियो आहे। एंटी करप्शन खाते पारां जारी कयल सर्कुलर मूजिबि शुरूआती मरहले में स्कूल सरबराहनि खे सिधो सओं तलब करण खां रोकियो वियो आहे, जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट में हेरा फेरी, बेज़ाब्तगिन ऐं सरकारी फंडनि जे ग़लति इस्तेमाल बाबति शिकायतूं ज़िले सतह जे सर्कल आफ़िसरनि या ज़ोनल जे डिप्टी सेक्टरनि ऐं डायरेक्टरनि बजाए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ज़रिए लाॻापियल स्कूलनि ॾांहुं उमाणियूं वेंदियूं। नए हिदायत मूजिब त शुरूआती मरहले में फील्ड आफ़ीसूं स्कूलनि में सिधी रीति जांच करणु, नोटिस जारी करणु, ज़ाती हाज़िरीअ लाइ तलब करणु या रिकॉर्ड घुराइण जी मजाज़ न हूंदियूं। जॾहिं त स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति वधीक कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सिंध जे हिदायत मूजिब कई वेंदी। अहिड़ी तरह स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि में स्कूल जो नालो, इल्ज़ाम जा तफ़सील, लाॻापियल माली साल, रक़म ऐं मौजूदा दस्तावेज़ी सबूत शामिल करणु लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां एंटी करप्शन अख़्तियारनि जो चवणु आहे त नए तरीक़ेकार जो मक़सदु स्कूलनि जो इंतिज़ामी मामलनि ऐं जायज़ ख़र्चनि खे मुतासिर करण खां सवाइ स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि जी गॾियल ऐं असराइती जांच पड़ताल खे यकीनी बनाइणो आहे। सिंध हुकूमत सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटियुनि सां लाॻापियल लॉ कॉलेज लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क़ाइमु कया आहिनि। उन हवाले सां कानून खाते जे अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज़ तारिक़ खे मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त इश्तियाक अहमद मेमण, अरुण प्रशाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो, जॾहिं त इरफान बुगियो, हाशिम लिगारी, अल्ताफ़ जुणे जो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़मा खे सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़ाइम थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब मेंबरनि ऐं चेयरमैननि जी मुक़ररीअ वारो मुदो 3 साल हूंदो। सिंध में मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवानदा। हैदराबाद खां कराची ॾांहुं निकतल प्यादल लॉन्ग मार्च काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुची वियो। हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ जे मज़ार ते हाज़िरी भरे दुआऊं घुरियूं वयूं। काफ़िलो बुलड़ी शाह करीम पहुतो त सियासी, समाजी ऐं कोपरस्त धुरियुनि तरफ़ां काफ़िले जी शानदार आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई वई। उन मौके ते लॉन्ग मार्च जो शामिल अॻवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं, लोंगियूं ऐं गुलनि जा हार पाराए भलीकार कयो वियो। काफ़िले जे अॻवाणनि चेयरमैन ज़बीउल्लाह मस्तोई, फ़ख्र ज़मा,
हुसैन बख्शांडियो सिकील दो चांडियो ऐं ॿियनि चयो त सिंध में मेरिट जी बहाली जे लाइ शागिर्दनि जो पुरमन एहतजाज जारी आहे, पर संदनि ख़दशनि ऐं मुतालबनि ते लाॻापियल इख़्तियारनि तरफ़ां घुरबल ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। हुननि इल्ज़ाम हयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुबैना करप्शन ऐं सिफारशी कल्चर सबबि मेरिट ते पूरो लंदड़ उमेदवारनि जो हक़ तलफ़ी थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त मुक़ररीन ऐं मेरिट बाबति साम्हूं आयल शिकायतुनि जी शफ़ाफ़ जाच कराए हक़दार उमेदवारनि खे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। अॻवाणनि वधीक चयो त मेरिट जी बहालीअ जे लाइ शुरू कयल तहरीक खे हाणे प्यादल लॉन्ग मार्च जी सूरत ॾिनी वई आहे, जेको मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां थींदो कराची पहुचंदो। हिननि ऐलान कयो त 14 अक्टूबर ते कराची में वज़ीर आला हाउस आॾो पुरमन एहतजाज करे मेरिट जी बहाली जे लाइ पंहिंजा मुतालबा पेश कया वेंदा। हुननि ख़बरदार कयो त जेकॾहिं मुतालबनि ते ध्यानु न ॾिनो वियो त मेरिट जी बहालीअ लाइ अमली क़दम न खया विया त एहतजाज जो दायरो वधीक वधायो वेंदो। सखर में औरत सां ज़्यादती बाद कारे कारीअ जो इल्ज़ाम, तशद्दुद ऐं क़त्ल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जद गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए तशद्दुद ऐं क़त्ल करण जी कोशिश वारे वाक़िए जो SSP सखर अहमद चौधरी नोटिस वठंदे मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई जो हुकुम जारी कयो आहे। पधराईअ मुताबिक़ SSP जे हुकमनि ते साइट एरिया थाणे जे SHO कार्रवाई कंदे वाक़िए में मुलविस ॿिनि जवाबदारनि गुलाम शबीर चाचड़ ऐं अली मुराद चाचड़ खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि खां जांच जारी आहे। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जे लाइ पिणु कार्रवायूं कयूं पियूं वञनि। वाक़िए जो साइट एरिया थाणे ते केस दाख़िल करे वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक कानूनी कार्रवाई ऐं तहफ़ुज़ फराहम करण जे लाइ वुमेन प्रोटेक्शन सेल मुंतकिल कयो वियो आहे, जिथे ज़रूरी कानूनी कार्रवाईअ बाद खेस अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हुकूमत सूबे जे 1133 ऐं अपग्रेड कयल सरकारी स्कूलनि जे इंतज़ामनि ऐं तालीमी मयार में बहितरीअ जे लाइ एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन सां भाईवारी करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। उन हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में सरकारी स्कूलनि जे इंतज़ामनि ऐं निजी शोबे जी शमूलियत, भाईवारी जी तरीक़ेकार, स्कूलनि जी कारकर्दगी, तालीमी नतीजनि ऐं जवाबदेही जे निज़ाम समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि मां 838 स्कूल सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऐं 295 स्कूल सिलेक्ट प्रोग्राम जा आहिनि। आलमी बैंक ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर थियल उन्हनि स्कूलनि में जदीद तालीमी सहूलियतूं फराहम कयूं वयूं आहिनि। उहे स्कूल सिंध जे 19 ज़िलनि में जदीद तालीमी कैंपस तौर क़ाइम कया पिया वञनि। इजलास में तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले ज़र तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथी खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर ताज़ो थियल इजलास में अपग्रेड कयल स्कूलनि लाइ शफ़ाफ़ ऐं पायदार एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन फ्रेमवर्क खे हतमी शिकिल ॾियण जी हिदायत कई आहे। हुन चयो त एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन खे हर मुमकिन सहकार फराहम करण जे इम्काननि जो जाइज़ो वरितो वेंदो, तंहिं हूंदे बि तालीम जे मयार ते का बि मसलहत क़बूल न कई वेंदी। इजलास में ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि जी मरहलेवार हवालगीअ जो अमल December 2026 खां December 2027 ते मुकमल कयो वेंदो। दस्तियाब सरकारी मनसूबाबंदीअ मूजिबि 552 स्कूल December 2026, वधीक 801 स्कूल March 2027 ऐं बाक़ी स्कूल December 2027 ते मुकमल करण जो हदफ़ मुक़ररु कयो वियो आहे। सिंध जे रिथाबंदीअ वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंध हुकूमत नेशनल SDGs इन्वेस्टमेंट फेयर में $562 मिलियन जा 7 सीड़पकारी मनसूबा पेश कया आहिनि, जिन जो मक़सदु अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट ऐं बुनियादी सहूलियतुनि जे शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा पैदा करणु आहे। सिंध में पाणी फराहमीअ जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण, आबी वसीलनि जे बहितर इंतज़ाम ऐं तरक़ियाती मनसूबनि खे निजी शोबे ऐं तरक़ियाती भाईवारनि जी सीड़पकारी वॾी अहमियत रखे थी। काल्ह तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त कराचीअ खे कींझर ढंढ मां 100 खां 150 किलोमीटर परे खां पाणी फराहम कयो वेंदो आहे, जॾहिं त सूबे जा ॿिया वॾा शहर सिंधु नदीअ जे ॿिन्ही पासनि ते आबाद आहिनि। सिंध जे पाणीअ जी ज़रूरतुनि जो वॾो इनसार सिंधु नदीअ ते आहे। सिंधु नदीअ में पाणीअ जी खोट सां सूबे में पाणीअ जी फराहमीअ जा मसला वधी वेंदा आहिनि। हुन चयो त सिंध में ट्यूबवेल जी तादाद 1 लख खां घटि आहे, जॾहिं त पंजाब में 14 लख ट्यूबवेल मौजूदु आहिनि। हुन सिंधु नदीअ में गदिले पाणीअ जी आमद ऐं कोचड़ी बेरार ते पाणीअ में लूणियाठ TDS जी वधंदड़ सतह ते
पिण गणतियों जो इज़हार कंदे चयो आहे त पाणी जे मयार ऐं फराहमी बाबति मसलनि ते असराइता कदम खणण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त पायदार तरक़ीअ जे मक़सदनि जी हासिलात लारी बजट ते इन असार काफ़ी न आहे। निजी सीड़पकारी, तरक़ियाती फाइनांसिंग, मौसमियाती फाइनांस ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे असराइते नमूने कम में आणणो पवंदो।

0: उथारियल सवालनि ते कहिड़ी अघ भराई थिए थी ऐं छा लाॻापियल इख़्तियारनि नौजवाननि जे ख़दशनि जे वाज़े ऐं इत्मिनान बख़्श जवाब ॾियण में कामयाब थियनि था। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासार्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। हम सईद अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32230।
8: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में हेल्थ केयर क्लिनिक मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे ताईं इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार TB बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे स्कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर

0: जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सबनी मरीजन के खादो चश्मा दवाओं मुफ्त में दिनी वेंदियूं अगर मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओं खणी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी गुप्त
1: आस पास की अवाम लाए खुशखबरी।

0: अशोक मोबाइल नंबर 03128631633।
1: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल साउथ दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टनवुड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो मेडिकल सेंटर ते OTT ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 03-36-36-879 ऐं 03-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: के हो तो आवाज भी मातली की।
0: छा आवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोच
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। GFM 88 नई आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ FM 90.4।

0: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा सीए थियण औरतन जी थियण बांझपन
1: अज़ा मुस्तफ़ा एमबीबीएस रेडियोलॉजी जी माहिर डॉक्टरणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न
3: आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली मालूमात 247-32-41-230।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे सुबुह 10 वक़्त 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज
6: रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4
9: पे तरक्की लाइ सोच
10: पोए GFM 90.4 मातली बदीन FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
10: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां ते राब्तो कंदा
9: 0557-86।
10: जी हाँ 225-25-786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो

0: 9 p.m. This time check is
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध 8 बजे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु मां आहियां गुलाब खान भेण। राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा जे लॉ कॉलेज लाइ ॿ बोर्ड क़ाइम, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में मुबैना मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च, कराची तरफ़ रवान ख़ते इस्तक़बाल, गुलन जी वर्खा। सखर में ज़ियाती बाद औरत ते तशद्दुद, केस दाख़िल, बजवाबदार गिरफ़्तार। एंटी करप्शन खाते जे अख़्तियारन तालीम खाते जी सिफारिश ते स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े छॾियो, हिदायत तलब करण खां रोकियो वियो। सिंध जा 1133 नवा ऐं अपग्रेड सरकारी स्कूल एनजीओस खे ॾियण जो फ़ैसिलो, सरकार अकेले सिर तालीम जे शोबे जो समूरो बार नथो ई खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो, तालीम जो वज़ीर सरदार अली शाह। कोटड़ी बैराज ते पाणी ज़हरीलो थियण जी तस्दीक, पाणी खोट सां मसला वधनि था, जाम खान शोरो। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध पब्लिक सर्विस कमिहानी निज़ाम, नौजवान ऐं हुकूमत जी ज़िमेवारी। एंटी करप्शन खाते जे इख़्तियारनि तां सिफ़ारिश ते स्कूल स्पेस

स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ तरीक़ेकार जोड़े तरीक़ेकार तहत एंटी करप्शन जी जांच टीमुनि जे सरबराहनि हेड मास्टरनि खे सिधी रीति तलब करण खां रोकियो वियो आहे। बजट बाबति शिकायतुनि ऐं जांच जे लाइ मुख़्तलिफ़ सरकारी स्कूलनि जे हेड मास्टरनि खे एंटी करप्शन खाते पारां हिरासा करण वारनि शिकायतुनि खां पोइ तालीम स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति ईंदड़ शिकायतुनि जी जांच जे हवाले सां नारो जोड़ियो। एंटी करप्शन खाते पारां स्कूल सरबराहनि खे सिधो सां तलब करण खां रोकियो वियो आहे। स्कूल स्पेसिफिक बजट में हेरा फेरी, बेज़ाब्तगी ऐं सरकारी फंडनि जे ग़लति इस्तेमाल बाबति शिकायत सर्कल आफिसरनि या ज़ोनल जे डिप्टी सेक्रेटरी ऐं डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ज़रिए लाॻापियल स्कूलनि ॾांहुं उमाणियूं वेंदियूं। नए हिदायत मूजिब त शुरूआती मरहले में फील्ड आफिसूं स्कूलनि में जाइ डायरेक्टर जनरल जी हिदायत मूजिब अहिड़ी तरह स्कूल स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि में स्कूल जो नालो, इल्ज़ामनि जा तफ़सील, लाॻापियल माली साल, रक़म ऐं मौजूदा दस्तावेज़ी सबूत शामिल करण लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां एंटी करप्शन अख़्तियारनि जो जायज़ ख़र्चनि खे मुतासिर करण खां सवाइ स्पेसिफिक बजट बाबति शिकायतुनि जी गॾियल जांच पड़ताल खे यकीनी बनाइणो आहे। सिंध हुकूमत सिंध ऐं कराची यूनिवर्सिटी लाइ बोर्ड ऑफ गवर्नर अख़्तियारनि पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब कराची यूनिवर्सिटीअ सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जॾहिं त इश्तियाक अहमद मेमण, अरुण प्रसाद, अरशद शर, इमरान मिठियाणी, हाकिम शेख ऐं फराज़ इम्तियाज़ शेख खे बोर्ड जा नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह सिरो सां लाॻापियल लॉ कॉलेज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो चेयरमैन बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक़ खे मुक़ररु कयो वियो, जॾहिं त इरफान गारी, अल्ताफ़ जुणे जो, अली रज़ा चन्ना, वसीम शाह ऐं राजा जवाज़ साहड़ खे नॉन ऑफिशियल मेंबर मुक़ररु कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह मखदूम तालिबुल मौला लॉ कॉलेज हाला जे प्रिंसिपल मखदूम मोहम्मद ज़ाकिर जे क़ाइम थियल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जे सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब मेंबरनि ऐं चेयरमैन मेरिट जी बहाली ऐं मुबैना मेरिट जे लताड़ ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो लॉन्ग मार्च कराचीअ तरफ़ रवां दवा।

हिते लॉन्ग मार्च जो शामिल अगवाणनि ऐं शिरकत कंदड़नि खे सिंधी सकावत जी अलामत अजरकूं लोंगियूं ऐं काफ़िले जे अगवाणनि चेयरमैन रबीउल्ला मस्तोई, फख्र ज़मां, हुसैन बख्श चांडियो, सिकील अदो चांडियो में मेरिट जी बहाली जे लाइ शागिर्दनि जो पुरमन एहतजाज जारी आहे, पर संदनि ख़दशनि ऐं मुतालबनि ते लाॻापियल इख़्तियारनि तरफ़ां घुरिबल ध्यानु न पियो ॾिनो वञे। हुननि इल्ज़ाम हयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन ऐं सिफारिशी कल्चर सबब मेरिट ते पूरो लंदड़ उमेदवारनि जो हक़ तलफ़ी थी रही आहे। हुननि मुतालबो कयो त मामू अल शिकायतुनि जी शफ़ाफ़ जांच कराए हक़दार खे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। अगवाणनि वधीक चयो त मेरिट जी बहाली जे लाइ शुरू कयल प्यादल लॉन्ग मार्च जी सूरत ॾिनी वई आहे, जेको मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां थींदो कराची पहुचंदो। हिननि ऐलान कयो त 14 अक्टूबर ते कराची में वज़ीर आला हाउस आॾो पुरमन एहतजाज करे मेरिट जी बहाली कया वेंदा। हुननि ख़बर अमली कदम न खया विया त एहतजाज जो दायरो वधीक वधायो वेंदो। सखर में औरत सां ज़्यादती बाद कारे कारीअ जो इल्ज़ाम, तशद्दुद ऐं क़त्ल जी कोशिश, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार। साइट एरिया थाणे जे हदि गुलशन इक़बाल में औरत सां मुबैना ज़्यादती करण बाद मथस कारे इल्ज़ाम लॻाए क़त्ल करण जी कोशिश वारे वाक़िए जो SSP सखर अहमद चौधरी नोटिस वठंदे मुलविस जवाबदार ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई जो हुकुम जारी कयो आहे। पधराई मुताबिक़ SSP जे हुकमनि ते साइट एरिया थाणे जे SHO कार्रवाई कंदे वाक़िए में मुलविस ॿिनि जवाबदारनि ग़ुलाम शबीर चाचड़ ऐं अली मुराद चाचड़ खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गिरफ़्तार जवाबदार खां जांच जारी आहे। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी वञनि वाक़िए जो साइट एरिया थाणे ते केस दाख़िल करे वधीक कानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। मुतासिर औरत खे वधीक कानूनी कार्रवाई ऐं तहफ़ फराहम करण जे लाइ वुमेन प्रोटेक्शन सेल मुंतकिल कयो वियो आहे, जिथे ज़रूरी कानूनी कार्रवाई बाद खेस अदालत में पेश कयो वेंदो। सिंध हुकूमत सूबे जे 1133 ऐं अपग्रेड कयल सरकारी स्कूलनि जे इंतज़ाम ऐं तालीमी मयार में बहितरी जे लाइ एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन सां भाईवारी करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। उन हवाले सां तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में सरकारी स्कूलनि जे इंतज़ाम ऐं निजूरियत भाईवारी जे तरीक़ेकार, स्कूलनि जी कारकर्दगी, तालीमी नतीजनि ऐं जवाबदेही जे निज़ाम समेत मुख़्तलिफ़ तफ़सीली गौर कयो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 1838 स्कूल सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऐं 295 स्कूल सिलेक्ट प्रोग्राम जा आहिनि। आलमी बैंक ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक जे सहकार सां तामीर थियल उन्हनि स्कूलनि में जदीद तालीमी सहूलियतूं फराहम कयूं वयूं आहिनि। उहे स्कूल सिंध जे 19 ज़िलनि में जदीद क़ाइमु कया पिया वञनि। इजलास में तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह चयो त पब्लिक सेक्टर सरकार अकेले सिरे तालीम जे शोबे जो समूरो भार नथी खणी सघे। मुआशिरे ऐं तालीम जे शोबे में महारत रखंदड़ इदारनि जी शमूलियत सां निज़ाम खे वधीक बहितर बणाए सघिजे थो। सिंध जे वॾे वज़ीर ताज़ो थियल इजलास में अपग्रेड कयल स्कूलनि लाइ शफ़ाफ़ ऐं पायदार एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन फ्रेमवर्क खे हतमी शिकिल ॾियण जी हिदायत कई आहे। हुन चयो त एजुकेशन मिशन्स खे हर मुमकिन सहकार फराहम करण जे इम्काननि जो जाइज़ो वरितो वेंदो, तंहिं हूंदे बि तालीम जे मयार ते का बि मसलहत क़बूल न कई वेंदी। इजलास में ॿुधायो वियो त 1133 स्कूलनि जी मरहलेवार हवालगीअ जो अमल December 2006 अमल कयो वेंदो। दस्तियाब सरकारी मनसूबाबंदीअ मूजिबि 552 स्कूल December 2026, 1 स्कूल March 2027 ऐं बाक़ी स्कूल December 2027 ते मुकमल करण जो हदफ़ मुक़रर। सिंध जे रिथाबंदीअ वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो आहे त सिंध हुकूमत नेशनल SDGs इन्वेस्टमेंट फेयर में $562 मिलियन जा 7 सीड़पकारी मनसूबा पेश कया आहिनि, जिन जो मक़सदु अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट ऐं बुनियादी सहूलियतुनि जे शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा पैदा करणु आहे। सिंध में पाणी फराहमीअ जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण, आबी वसीलनि जे बहितर इंतज़ाम ऐं तरक़ियाती मनसूबनि खे निजी शोबे ऐं तरक़ियाती भाईवारनि जी वॾी अहमियत रखे थी। काल्ह तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त कराची ढंढ मां 100 खां 150 किलोमीटर परे खां पाणी फराहम कयो वेंदो आहे। पेजाब ॿिया वॾा शहर सिंधु नदीअ जे सिंध जे पाणीअ जी ज़रूरतुनि जो वॾो इनसार सिंधु नदीअ ते आहे। सिंधु नदीअ में पाणीअ जी खोट सां सूबे ला वधी वेंदा। छो त सिंध में ट्यूबवेल जी तादाद 1 लख खां घटि आहे, जॾहिं त पंजाब में 14 लख ट्यूबवेल मौजूदु आहिनि। हुन 2008 TDS जी वधंदड़ सतह ते पिणु ॻणितीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त पाणी जे मयार ऐं फराहमीअ बाबति मसलनि ते असराइता क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त पायदार तरक़ीअ जे मक़सदनि जी हासिलात लाइ सिर्फ़ सरकारी बजट ई नाहे, निजी सीड़पकारी, तरक़ियाती फाइनांसिंग, मौसमियाती फाइनांस ऐं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खे कम में आणणो पवंदो।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी नौकरियुनि जे लाइ मेरिट ऐं निज़ाम जी शफ़ाफ़ियत बाबति बहस हिकु भेरो ॿीहर साम्हूं अची वियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगिन ऐं मेरिट जे हवाले सां ख़दशनि ख़िलाफ़ सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी हैदराबाद खां कराचीअ जे वज़ीर आला हाउस ताईं पियादल मार्च शुरू कयो आहे। शागिर्दनि जो मुतालबो आहे त संदनि ख़दशनि जो जाइज़ो वठी इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत खे ॿिए तरफ़ मामलनि जे हल जे लाइ लाॻापियल सरकारी इदारनि जो मौक़ुफ़ ऐं अमली क़दम पिण अहम आहिनि। कमीशन सरकारी मुलाज़मतुनि लाइ उमेदवारनि जी चूंड में अहम किरदार अदा करे थी। अहिड़े इदारे जे इम्तिहानी अमल में शफ़ाफ़ियत ऐं मेरिट खे यकीनी बनाइण उमेदवारनि जे एतमाद लाइ

शख्सियतों ने पिण शिरकत करे शागिर्दन सा यकदिल जो एहतजाज कर नौजवानन जो मौकफ है तो मुकाबले के इम्तिहानन में शफाफियत ए काबिलियत के बुनियाद यकीनी जी के बराबर मौका मिली सकन। इम्तिहानी निज़ाम बाबत शिकायतों की मौजूदगी में अहम सवाल वो है तो उन्हें जांच कड़े तरीके से कई वे हकीकतू कि सामू आंदी वन। एक तरफ शागिर्दन के पांजा खदशा पेश कर उन्हें अजाले जो मुतालबो कर हक हासिल है तो वरी बे तरफ कें भी इदारे या फर्द बाबत लगल इल्जाम की तस्दीक मुनासिब जांच ए सबूतों के बुनियाद से थियण जरूरी है। उन्हें करे मामले के हल के लिए आजाद ए गैर जानबदार जांच इम्तिहानी अमल के तरीकेकार बाबत वाद शिकायतों की अदालत के लिए असरायतो निज़ाम अहमियत रखे तो जांच दौरान कें भी किस्म जो बेजाबतगी थन तो जिम्मेवार खिलाफ कानून ए लागापियल जबतन मूजिब कार

0: दरियाए सिंध की लहरों दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको बि ऐं हाज़मे जे मसइलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। कोरस मिलण जो हंध ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ा सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: खुशखबरी, खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम मुफ़्त फेको ऑपरेशन कर्ज लॻाईंदा। अवां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल मरीजन खे लेंसिस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहमदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 7। असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130836316।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो, डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते डिलीवरी सस्ते अघ ते।

0: कई वजे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
1: तारो
2: दुखोयल इंसानियत जी बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण रेन हई में सूर चेल थियण कमजोरी आई बारड़न आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद जे दिन मरीजन जो मुफ्त
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 247-32-41-230
4: खुशखबरी खुशमाजी पंहिंजे शहर मातली में हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे

0: वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578
4: 3331525577।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वाइट एश ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अप इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: बवासीर जी तकलीफ़, रत अचण, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मज़ा आयो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो नायबाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राति जे 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-87। सुकून एॾां कदम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी।

0: अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल मालूमात लाइ 2347।

0: साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे यादमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो आई बियन बीमारियन जो इलाज
1: दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्प प्रोग्राम दाखला है ऑपरेशन 13 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबा जे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने जे में जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा इंदा अवां बिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी नोट सबनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदियूं मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो थाव खणी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते अवां के होलसेल रेट में मिलंदी वारन लाए 12 सैकड़ो ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट रुद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियूं या के मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0863163।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजी में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी में साम्हूं सिर्फ़ औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रा हेयर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ा रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 0310-3143-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिट नेटवर्क ते।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।